0: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया

0: की मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित भी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ₹1,370 की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए ₹70 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित ना करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. PM will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Programme has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the disability pension scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
3: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities

0: கேட்டு அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது இன்றைய தேனிசை நிகழ்ச்சி. எஃப்எம் கோல்டில் இனி தொடர்வது சம்ஸ்கிருத செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாக ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சக புனித திரிபாடி. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन लद्दाखराज्ये प्रायः 50-300-कोटिरुप्यकाणां पञ्चप्रमुखविकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं विधास्यति. एतासां परियोजनानाम् उद्देश्यं सम्पर्कव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, ऊर्जासम्बद्ध आधारित संरचनायाः परिष्करणं, सांस्कृतिकवैभवस्य संरक्षणं तथा क्षेत्रे जलसुरक्षायाः संवर्धनं चास्ति. अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्याम् अस्मिन् वर्षे आयोजितासु एशिया क्रीडायाः भारतीय क्रीडक दलस्य सदस्यैः सह संवादं विधास्यति. अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री उपस्थित जनसमूहमपि संबोधयिष्यति. अवधेयं यत् जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्. भारतेन आहत्य 85 पदकानि प्राप्तानि, येषु 21 स्वर्णपदकानि, 27 रजतपदकानि तथा 37 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
2: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु. एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु. TV शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः श्रृण्वन्तु.

0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 40,000+ एकादशलक्षाधिकेभ्यः रेलकर्मचारिभ्यः 78 दिवसानां वेतनसमतुल्यं PLB इति उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन धनम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् अस्य धनस्य वितरणाय प्रशासनेन 90,200 कोटि रूप्यतोप्यधिका राशि आवंटिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अस्माद् वर्षादारभ्य 5 वर्षपर्यन्तं राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य निरन्तरतायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। अस्य कार्यक्रमस्य कृते 28,453,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययः निर्धारितः अस्ति। अस्य राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य नाम परिवर्त्य प्रधानमन्त्री सामाजिक सहायता योजना इति कृतमस्ति। श्रीवैष्णवः दिव्यांग पेंशन योजना इत्येताम् आलक्ष्य अवदत् यत्
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: कृषि कृषक कल्याण विभागः अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य महिला कृषक दिवसस्य राष्ट्रिय स्तरीयं कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यति। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं भारतीय कृषि क्षेत्रे महिलानां योगदानस्य सम्मानः अस्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी चेत्येतेषु स्थलेषु अतिवृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा नारंगवर्णपरा संचेतना प्रकाशिता। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ हैदराबादे आयोजितायां 4th 20-20 अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 24 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि त्योहारों के मौसम में सुबह कितनी अलग होती है? कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज, कहीं पूजा की तैयारी और हर घर में एक अलग सी रौनक। आज शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज माँ स्कंद माता की आराधना का दिन है। मान्यता है कि माँ अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में लिए सिंह पर विराजमान रहती है। ये रूप हमें दो बातें सिखाता है। पहली, ममता में कितनी बड़ी ताकत होती है, क्योंकि एक माँ का स्नेह और संस्कार ही एक बच्चे को साहसी और सक्षम बनाता है। वहीं दूसरी कि कोमलता और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यही बात हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी लागू होती है। जो हमारे पास है, चाहे वो प्यार हो, समय हो या अपनापन, उसे बांटने से वे घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही है। एक मुस्कान, किसी के लिए थोड़ा सा वक्त या बस एक अच्छा शब्द, ये छोटी चीजें किसी का पूरा दिन बदल सकती हैं। इसी अपनेपन और उमंग के साथ आज से मेरे कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। हेलो सरबजीत।
1: हेलो वैष्णवी, एंड एज यू राइटली सेड दैट द नवरात्रि फेस्टिवल इज ऑन, एंड सो वी कैन से दैट स्पिरिचुअलिटी, prosperity, enthusiasm is all around. So listeners, participate, enjoy and make the most of it. And of course, indeed, once again, a very warm and loving welcome to all our listeners tuned to Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashwani network. Listeners, we are back again with your daily favorite news magazine program, Aaj Savere. And the next 30 minutes, Vaishnavi, are indeed going to be packed with news, international, national news, metro updates, and of course, together

0: the end of the program, we shall flip the pages of history to see what makes 15th of October so, so memorable. So, Vaishnavi, without much ado, let's begin the program with the news headlines.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क, बिजली, पर्यटन और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख परियोजनाओं में कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से बने नए यात्री टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग, 9 मेगावाट की हनु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट डहा हनु खालसी बिजली लाइन का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा श्री मोदी लेह के सिंधुघाट में देश के पहले शैलचित्र संरक्षण पार्क का उद्घाटन करेंगे। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: The government has constituted a committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures for addressing their concerns. Former member of Niti Aayog, Professor Ramesh Chand, will chair the committee, which included Agriculture Commissioner, Joint Secretary Sugar, Department of Food and Public Distribution, and Joint Secretary Legal Metrology, Department of Consumer Affairs as members. More details on this from our correspondent.
3: The committee will examine the demand for an increase in remunerative returns to sugarcane farmers, taking into account cultivation cost and other relevant factors. It will also examine the demand for revision of the ex-mill minimum selling price of sugar in the context of sugar production costs, market realizations and the financial viability of sugar mills. Other key areas of examination will include existing mechanisms for testing and reporting sugar recovery and prevailing sugarcane weightment practices at sugar mills. The committee will also examine prevailing practices relating to deductions from the weight of mechanically harvested sugarcane and assess the extent of actual losses, if any, arising from mechanized harvesting. It will evaluate the financial impact of the present practices on the cane price payable to farmers and may consider any other related matters deemed necessary. With Anand Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आइची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
0: Puducherry's Le Se Franche International de Puducherry, one of the oldest French schools outside France still in operation, is celebrating its bicentenary today, marking two centuries of educational and cultural history in the Union Territory. Founded in the year 1826 as the College Royal de Puducherry by French Governor Yuno Despedi, the institution has evolved through successive political and social changes, retaining its place in Puducherry's educational heritage and its links with both French and Indian communities. We bring you more details on this from our correspondent.
4: The week-long bicentenary celebrations feature exhibitions, cultural performances, historical presentations and alumni reunions. More than 400 former students, many travelling from France, are participating in the celebrations, while over 1,000 guests are expected to attend the official ceremony today evening. French Ambassador to India, Thierry Matou, Director General of the Agency for French Education Abroad, Alexandre Maurice, Puducherry Lieutenant Governor K. Kailash Nathan and Chief Minister N. Rengasamy will also participate in the bicentenary celebrations. Established at a time when colonial society was marked by racial and caste divisions, the school was initially reserved for white boys. Access gradually expanded over the following decades. Its educational activities also

0: further legal action is underway.
1: और सर अभिजीत सर बेंगलुरु से चलते हैं अब महाराष्ट्र की ओर.
0: जी,
1: राज्य सरकार ने दिवाली से पहले राज्य की 2,14,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2,000 रुपए देने की घोषणा की है. महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत 1,08,627 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 1,05,470 सहायिकाओं के लिए 42,81,00,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है. और अगली खबर की ओर रुख करें तो महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड महारेल ने पनवल निगर निगम क्षेत्र में यातायात की भीड़ कम करने और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली देरी से राहत दिलाने के लिए 6 रेलवे ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया है. ये ओवरब्रिज खारगर, कलम्बोली, कांदा कॉलोनी, कलुंद्रे, अडवली और रोहिंजन में प्रस्तावित हैं. तो सर्वजीत, ये तो मुंबई की खबरें, और आगे आपके पास क्या है?
2: जी, द तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज वन 4 क्वालिटी रिकॉग्निशंस. दे वर प्रेजेंटेड इन हैदराबाद यस्टरडे ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे. चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश वी पाटिल रिसीव देम फ्रॉम तेलंगाना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड एनर्जी मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का. The recognitions were for quality management, for information security, for stores management, and the quality mark for service excellence. ISO 9001 recognizes good quality practices across offices and departments, including record keeping, internal controls, and continuous improvement. It covers IT networks, data protection, access control, and cyber security risks. The 5S method developed in Japan promotes cleanliness, order and discipline in storing materials and equipment, and it ensures easy identification of materials, accurate inventory and timely supply.
1: और कोलकाता की ओर रुख करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के स्वर्ण जयंती संस्करण की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस वर्ष मेले की थीम भारत रखी गई है. इस बार मेले में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ कई विशेष विषयों को भी प्रमुखता दी जाएगी. इनमें रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक रक्तकरबी के 100 वर्ष पूरे होने और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता उत्तम कुमार की जन्म शताब्दी शामिल है. और अब रुख करते हैं मौसम का, क्योंकि मौसम का मिजाज भी हमारे दिन की शुरुआत को खास बना देता है. सबसे पहले बात दिल्ली की. राजधानी में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है. बात करें तापमान की तो यहां अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मुंबई में गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है. यहां हीट वेव यानी लू को लेकर चेतावनी दी गई है. अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. और कोलकाता की बात करें तो यहां आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. शहर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
2: Well, Chennai is likely to witness partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 24 degrees, maximum of around 33 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Minimum temperature around 20 degrees, maximum may go up to 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see generally cloudy sky with light rain or drizzle. Temperatures around 23 degrees to a maximum of 34 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है.
2: In 1676, on this day, King of England permitted the East India Company to mint the rupee and paisa coins at Bombay. 1888, 15th October, Gopal Ganesh Agarkar started daily newspaper Sudharak. And 1932, on this day, first Indian commercial airline service Tata Sons or the Tata Airlines started.
1: और 1949 में आज ही के दिन पूर्वोत्तर भारत की एक पुरानी रियासत त्रिपुरा औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बनी. वहीं बात करें 1990 की तो 1990 में आज ही के दिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई. और 2008 में आज ही के दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय

0: ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया।
1: 1949 on this day the process of the integration of the Indian state was completed when the last three states Tripura, Manipur and Banaras were merged and 1990 Bharat Ratna that is India's highest award was given to Dr. Nelson Mandela the South African black nationalist leader who arrived in India on a five-day visit. He is the first non-Asian to get this honor. 1994 on this day the SROS C2 Indian remote sensing satellite IRSP2 which carried remote sensing payload was placed in orbit and on this day in the year 2000 Sachin Tendulkar became the highest run getter in one day internationals during his innings of 69 in the final of the ICC cricket tournament against New Zealand.
0: तो ये तो थी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके बारे में हमने जिक्र किया और अब बात कर लेते हैं आज के दिन की विशेषता के बारे में। श्रोताओं आज विश्व विद्यार्थी दिवस है। ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती का भी अवसर है। आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता पायल शर्मा की रिपोर्ट।
2: सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये विचार हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। आखिर एक सपना किसी विद्यार्थी की जिंदगी को कितना बदल सकता है? क्या एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण बालक असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है? क्या सीमित संसाधनों के बावजूद कोई अपने विचारों से पूरे देश का भविष्य बदल सकता है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन इन सवालों का प्रेरणादायक उत्तर है। 15 अक्टूबर यानी आज उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें शिक्षा की शक्ति और विद्यार्थियों की असीम संभावनाओं की याद दिलाता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से अपनी यात्रा शुरू करने वाले डॉक्टर कलाम ने अखबार बेचने से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर तय किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति बनना नहीं थी, उनकी असली पहचान थी युवाओं के सपनों पर उनका अटूट विश्वास। वे विद्यार्थियों में केवल भविष्य के नागरिक नहीं बल्कि वर्तमान के परिवर्तनकारी विचार देखते थे। उनका मानना था यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, यानी अपने सपनों को साकार करने से पहले उन्हें देखने का साहस करना जरूरी है। और शायद विद्यार्थी जीवन की सबसे खूबसूरत बात भी यही है। ये वो समय है जब हमारे पास सवाल पूछने की स्वतंत्रता, नई चीजें सीखने का अवसर और अपनी पहचान बनाने की सबसे बड़ी संभावना होती है। लेकिन क्या एक अच्छा विद्यार्थी होने का अर्थ केवल अच्छे अंक प्राप्त करना है? क्या सफलता की पहचान सिर्फ हमारी डिग्री, हमारी रैंक या हमारी नौकरी से होती है? नहीं, एक सच्चा विद्यार्थी वो है जो असफल होने के बाद भी सीखना नहीं छोड़ता, जो दूसरों से आगे निकलने के साथ साथ स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है और जो ज्ञान को केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करता है। डॉक्टर कलाम कहा करते थे, एक्सीलेंस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट, अर्थात उत्कृष्टता कोई संयोग नहीं बल्कि निरंतर प्रयासों का परिणाम है। याद रखिए, किसी परीक्षा में कम अंक आना आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं है, किसी प्रतियोगिता में असफल होना आपके सपनों का अंत नहीं है और दूसरों की सफलता आपसे आपकी संभावनाएं नहीं छीन लेती, क्योंकि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा वो होती है जिसमें हमें प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है बल्कि वो होती है जिसमें हमें चुनौतियों के बीच अपने आत्मविश्वास, धैर्य और ईमानदारी को बनाए रखना होता है। डॉक्टर कलाम को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके सपनों को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने विचारों और कर्मों में जीवित रखें। इस विद्यार्थी दिवस पर संकल्प लें कि हम सवाल पूछने से नहीं डरेंगे, असफलताओं से हार नहीं मानेंगे और अपनी सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखेंगे।
3: कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा।
1: So indeed, listeners, lots and lots of words of encouragement, of forward-looking approach and the determination to achieve your dreams.
0: बिल्कुल सरबजीत, और APJ अब्दुल कलाम की अगर बात कर ही रहे हैं तो वो हमेशा सपने देखने के लिए कहा करते थे
1: जी।
0: और अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी उनकी एक बहुत खूबसूरत बात थी कि वो कहते थे कि हमेशा अपने अंदर की विद्यार्थी को जगाए रखिए।
1: Absolutely, always be a learner.
0: बिल्कुल। और श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, बात एक ऐसी छोटी सी आदत की जो हमें कई बीमारियों से बचाने में बड़ी भूमिका निभाती है। ये आदत है साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धोना। हर साल आज ही के दिन वैश्विक

0: हाथ धुलाई दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ज़रा सोचिए, हम दिन भर कितनी चीज़ों को छूते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, दरवाज़ों के हैंडल, सार्वजनिक परिवहन में लगी रेलिंग और ना जाने कितनी दूसरी सतहें। इन पर मौजूद कीटाणु हमारे हाथों के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं, खासकर जब हम बिना हाथ धोए खाना खाते हैं या अपने चेहरों को छूते हैं। क्यों सरबजी?
1: जी वैष्णवी, एंड इंडीड द हैबिट इज स्मॉल बट जस्ट दोज फ्यू सेकंड्स यू नो टेकन आउट ऑन अ डेली बेसिस एंड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इन आवर डेली स्केड्यूल कैन ब्रिंग अस सो मच ऑफ बेटर हेल्थ। सो एज हैज बीन सेड दैट दिस सिंपल एक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्स लेस देन अ मिनट एंड ऑफ कोर्स कैन मेक द बिग डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। It's unfortunate that billions of people around the world still don't have access to basic hand washing facilities at home, at school, or in their local health clinic. Or sometimes the facilities are there, but the knowledge or the will to do this small act is missing.
0: Jee.
1: So, of course, the evidence.

0: billions of people around the world still don't have access to basic hand washing facilities at home, at school, or in their local health clinic. Or sometimes the facilities are there, but the knowledge or the will to do the small act is missing.
1: Gee.
0: So, of course, the evidence is clear. Good hand hygiene through hand washing with soap or alcohol-based hand rub can dramatically reduce the transmission of diseases that claim millions of lives each year. So Vaishnavi, let's from today itself take a pledge that all of us will do the needful as far as proper hand washing is concerned.
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही छोटी छोटी आदतों से ही हम बड़े बदलाव ला सकते हैं.
0: जी.
1: तो श्रोताओं, आज से जरूर कम से कम 20 सेकंड निकालिए और अच्छे से जरूर हाथ धोइए. और अब आगे बढ़ते हैं. अब उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को याद करते हैं जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है. सबसे पहले बात दुर्गावती देवी की. आज़ादी की लड़ाई में कुछ नाम ऐसे भी थे जो इतिहास के पन्नों में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों की तुलना में कम चर्चित रहे, लेकिन उनका योगदान बेहद अहम था. ऐसी ही एक साहसी क्रांतिकारी थी दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है. 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या के बाद जब भगत सिंह अंग्रेजों से बचकर निकलना चाहते थे, तब दुर्गा भाभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी मदद की. लेकिन दुर्गा भाभी की भूमिका केवल यहीं तक सीमित नहीं थी. वे क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहीं और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में स्वयं भी आगे आईं. दुर्गा भाभी ने चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलोसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने में सहायता की. उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाएं केवल पर्दे के पीछे सहयोग नहीं कर रही थी बल्कि जोखिम उठाकर इतिहास भी रच रही थी. और सरबजीत, अब अगले शख्सियत के अब रुख करते हैं.
0: जी.
1: जागो फिर एक बार, सूरज उगा किरणों का संसार, हृदय में भर लो उजियारा, उठो चलो नया सवेरा, सपनों का पीछा करो ना डरो कभी हारा. हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता केवल जागने का आह्वान नहीं है बल्कि चेतना, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी देती है. निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे, लेकिन उनकी पहचान केवल एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे साहित्यकार के रूप में भी है जिन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक असमानता, मानवीय संवेदना और रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई. उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और वो तोड़ थी पत्थर शामिल है. जहां राम की शक्ति पूजा संघर्ष और आत्मबल को अभिव्यक्त करती है, वहीं सरोज स्मृति में अपनी पुत्री को खोने का उनका व्यक्तिगत दुख कविता के रूप में सामने आता है. वह तोड़ती पत्थर में उन्होंने मेहनत कश महिला के जीवन और संघर्ष को अपनी कविता का विषय बनाया. और निराला ने हिंदी कविता को परंपरागत ढर्रे से बाहर निकालकर उसे नई भाषा, नए शिल्प और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की शक्ति भी दी.
0: And Vaishnavi, 15th October, we must talk about the great Richard Lynn Carpenter, an American musician, singer, songwriter, and record producer who formed half of the sibling duo, the Carpenters, alongside his younger sister, Karen. He had numerous roles in the Carpenters, including record producer, arranger, pianist, keyboardist, and songwriter, as well as joining with Karen on harmony vocals. Richard composed many of the Carpenters' hits, such as Goodbye to Love, Top of the World.
1: और अब हिंदी फिल्म संगीत के उस दौर को याद करते हैं जब गीतों की धुनें फिल्मों की पहचान बन जाती थी. उस दौर की बेहद लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर सिंह रघुवंशी का जन्म आज ही के दिन 1922 को हुआ था. शंकर और जयकिशन ने बरसात, आवारा, श्री 420, अनाड़ी और संगम जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिया. उनके संगीत की खासियत थी भव्य ऑर्केस्ट्रेशन और भारतीय धुनों के साथ नए प्रयोग. आइए आपके आपको हम सुनाते हैं उन जोड़ी के द्वारा बनाए गए कुछ खूबसूरत गीत.
2: नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हम

0: इस जोड़ी ने कई बार फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार जीता और वर्ष 1968 में पद्मश्री से सम्मानित हुई.
1: And of course, although primarily active in the Hindi film industry as a composer duo, this combination of Shankar and Jaikishan strongly influenced the next generation of Indian music directors. And listeners, of course, we are also remembering today Sir P.G. Wodehouse, English writer and one of the most widely read humorists of the 20th century. His creations include the feather-brained Bertie Wooster and his sagacious valet Jeeves, the Immaculate and Lord's Emmis and the Blandings Castle set. And Vaishnavi, almost time to wind up our show.
0: जी बिल्कुल सरबजीत, और श्रोताओं इसी के साथ आज सवेरे में आज की हमारी मुलाकात यहीं पूरी होती है. उम्मीद है आज की बातें आपके लिए जानकारी के साथ साथ कुछ अच्छे विचार और मुस्कुराने की वजह भी लेकर आई होगी.
1: Listeners, thank you very much for tuning in. Have a superb day.
0: नमस्कार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी. सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की. हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना. और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है. वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे.
3: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे. लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा. श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे. अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा.
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है. पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा.
4: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया. ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं. करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है.

0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
1: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटका और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकार

0: हजारों के लिए काम कर रही है।
1: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
2: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
3: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
4: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
0: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
6: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
3: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा

0: मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இதுவரை சவித்ரா ஸ்ரீராம் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். ஆர் சுவாதிஸ்ரீ அவர்கள் வயலின், ஜே பி சூர்யா நம்பீசன் அவர்கள் மிருதங்கம், கும்பகோணம் எஸ் பாலாஜி சாய்ராம் அவர்கள் மோர் சிங்.
1: ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है. श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे.
3: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे. लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा. श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे. अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा.
2: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है. इसके साथ ही भंडार सीमा 1,000 क्विंटल निर्धारित की है. ये इस वर्ष नवंबर तक लागू रहेगी. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जमाखोरी को रोकने और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी भंडार मानदंडों में संशोधन किया है. संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत कोलकाता और इसके क्षेत्रों तथा असम के लिए भंडार सीमा 2,000 क्विंटल निर्धारित की गई है. मंत्रालय ने कहा कि औसत खुदरा चीनी के मूल्य में अगस्त में अपने उच्चतम स्तर से 15% तक का कमी आई है. चीनी की कीमतों में कमी सरकार के चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसके सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का असर है. थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से ये भी आग्रह किया गया है कि वे मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतों में आई भारी गिरावट का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे. राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है. राष्ट्रीय सरस मेला 2026 ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रहा है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लगभग 1500 महिला उद्यमी और कारीगर हिस्सा ले रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की. सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मातृत्व प्रेम और स्नेह की प्रतीक मां स्कंद माता का आशीर्वाद हर परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव लेकर आए. गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह ने कहा कि डॉ. कलाम ने अपनी असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग भारत को एक प्रमुख सामरिक शक्ति बनाने के लिए किया और राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा. श्री शाह ने कहा कि भारत के मिसाइल मैन डॉ. कलाम हमेशा एक आदर्श बने रहेंगे और युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे. इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे. जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया. भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए. वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया. वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य का जवाब में

0: last night, chasing a target of 248 runs set by West Indies. India scored 223 for 9 in 19.3 overs. Sanju Samson was the top scorer with 56 runs. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से बताने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में तत्काल सुधारों का आह्वान किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर जानकारी मांगी। मिसाइल संबंधी चेतावनियों में देरी का हवाला देते हुए यूक्रेन ने अमरीका पर रूस की सहायता करने का आरोप लगाया। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बदलती वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप बहुपक्षीय संस्थाओं में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। अबुधाबी में आयोजित रायसीना संवाद के मध्य पूर्व संस्करण में उन्होंने कहा कि देशों के छोटे समूहों के बीच मजबूत सहयोग यानी लघु पक्षवाद इस प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत यूएई साझेदारी के पिछले एक दशक का उल्लेख करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने बदलते वैश्विक परिवेश के अनुरूप सफलतापूर्वक खुद को ढाला है। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा करना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय पर अत्यधिक चयनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भारत ने कहा कि कुछ देशों में विरोध प्रदर्शनों पर कार्यालय की प्रतिक्रिया दोहरे मापदंडों को दर्शाती है, जिससे बहुपक्षीय संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 23वीं समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। श्री स्वरूप ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और मानवाधिकार उच्चायुक्त के विस्तृत बयानों का उल्लेख किया। इन बयानों में सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों से जुड़े मामलों में हुई हत्याओं की तत्काल गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। बयानों में संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के हिरासत में लिए गए नेताओं को कानूनी सहायता और अपने परिवारों से मिलने की अनुमति देने के साथ साथ उचित कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सुलभ कराने पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और स्थानीय लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक राजनीतिक संवाद शुरू करने का आह्वान किया गया था। यूक्रेन ने अमेरिका पर रूस की मदद करने का आरोप लगाया है, क्योंकि वह रूस के मिसाइल हमलों के बारे में सटीक चेतावनी देने में विफल रहा। यूक्रेन ने स्टारलिंक पर लगे प्रतिबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह आरोप रूस के भीषण हवाई हमलों के बाद लगाया गया है, जिनमें 9 लोग मारे गए। इन हमलों में बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया, जिससे 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हवाई हमले के सायरन बजने से पहले ही बैलिस्टिक मिसाइलें कीव गिरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस के डीजल पर लगे प्रतिबंध हटाने, रूस की रिफाइनरियों पर हमले रोकने का आग्रह करने और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को बदलने का सुझाव देने के बाद यूक्रेन और अमेरिका के बीच संबंध काफी बिगड़ गए। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब उत्तर कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ लंबे समय से जारी कूटनीतिक गतिरोध के बीच अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने बताया कि सेना ने कल देश के पूर्वी जल क्षेत्र में 2 प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि इन्हें किसी वास्तविक पनडुब्बी से दागा गया या पानी के भीतर से ही किसी परीक्षण प्लेटफॉर्म से दागा गया। दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के 2 मालवाहक जहाजों GFS प्राइट और GFS गिसेले पर अज्ञात मिसाइलों से हमले किए जाने की खबर है। सिंगापुर के समुद्री और बंदरगाह प्राधिकरण ने बताया है कि इस हमले से GFS प्राइट आग लगने के बाद डूब गया। जहाज में सवार

0: सभी 21 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इस हमले में जीएसएफ गिसेले के ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसके 22 चालक दल के सदस्य भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दोनों जहाजों में से किसी पर भी कोई सिंगापुर वासी सवार नहीं था। प्राधिकरण ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर किए जा रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस्लामिक क्रांति रक्षक कोर के नौसेना कमांडर अली अजमाई ने घोषणा की है कि आईआरजीसी नौसेना और ईरान की नौसेना खाड़ी हॉर्मुज डमरू मध्य और ओमान की खाड़ी पर 2400 घंटे नियंत्रण बनाए रखती है। आईआरजीसी नौसेना कमांडर ने कहा है कि गुजरने वाले जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने अमरीका के उकसावे के कारण नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की चेतावनी दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन जारी रखने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करने का आग्रह किया है। दूतावास ने अपनी नई सलाह में बताया है कि 10 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर हुए हमले में घायल हुए 2 भारतीय नागरिक अब अस्पताल में भर्ती हैं। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं, हालांकि कुछ व्यवधान बने हुए हैं। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब से आने जाने वाली उड़ानें निलंबित कर दी हैं। सऊदी अरब की सऊदी एयरलाइंस दम्माम, जद्दा और मदीना से निर्धारित उड़ानें संचालित कर रही हैं। वहीं फ्लाइनास दम्माम लखनऊ सेक्टर पर निर्धारित उड़ानें संचालित की जा रही हैं। कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रिलिया ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए। समारोह में इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार और उनके कोलंबियाई समकक्ष उमर बुलास गोबार उपस्थित थे। दोनों देशों ने अपने मुक्त व्यापार समझौते को एक दिन पहले ही औपचारिक रूप से बहाल कर दिया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए। 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। संजू सैमसन ने 56 रन और तिलक वर्मा ने 43 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की ओर से कीमो पॉल ने 5 विकेट लिए। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए। इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर पर रही। श्रृंखला का अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने 4th स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
1: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत का रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वहीं भारत की 18 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम रविवार से मोंटेनेग्रो के बुडवा में शुरू होने वाली दूसरी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। 2 वर्ष पहले अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित पहली चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड के बाद दूसरा स्थान हासिल किया था। उस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने कुल 17 पदक जीते थे, जिनमें 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में तत्काल सुधारों का आह्वान किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा की गई कार्यवाही पर रिपोर्ट मांगी। मिसाइल संबंधी चेतावनियों में देरी का हवाला देते हुए यूक्रेन ने अमेरिका पर रूस की सहायता करने का आरोप लगाया। और खेलों में वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। और भारत की 18 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम रविवार से मोंटेनेग्रो के बुडवा में शुरू होने वाली दूसरी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी।

0: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: इन्वेस्टिंग ओड पाड़ तैयार।

என்பது.

0: मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। इसके साथ ही भंडारण सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की है। ये इस वर्ष नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जमाखोरी को रोकने और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी भंडारण मानदंडों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत कोलकाता और इसके क्षेत्रों तथा असम के लिए भंडारण सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि औसत खुदरा चीनी के मूल्य में अगस्त में अपने उच्चतम स्तर से 15% तक कमी आई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय पर अत्यधिक चयनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। श्री स्वरूप ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति पर राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और मानवाधिकार उच्चायुक्त के विस्तृत बयानों का उल्लेख किया। इन बयानों में सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों से जुड़े मामलों में हुई हत्याओं की तत्काल गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बदलती वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप बहुपक्षीय संस्थाओं में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। अबूधाबी में आयोजित रायसीना संवाद के मध्य पूर्व संस्करण में उन्होंने कहा कि देशों के छोटे समूहों के बीच मजबूत सहयोग यानी लघु पक्षवाद इस प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उत्तरी रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली विशेष रेलगाड़ी नई दिल्ली से आज और शनिवार को दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी और ये अगले दिन सुबह 3 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। कटरा से ये रेलगाड़ी कल और 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। दूसरी रेलगाड़ी 18 और 20 अक्टूबर को दोपहर 2:15 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी और अगले दिन तड़के 3 बजे कटरा पहुंचेगी। ये ट्रेन 19 और 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कटरा से प्रस्थान कर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी विशेष रेलगाड़ी के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मातृत्व प्रेम और स्नेह की प्रतीक मां स्कंद माता का आशीर्वाद हर परिवार में प्रेम शांति और सद्भाव लेकर आए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. We have more from a correspondent.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों का सफर आसान होगा।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा। कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। श्री शाह सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन लोगों के पुनरुद्धार में शामिल है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31/3/2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ काम दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
0: ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के जनसेवा के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया है कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़

0: रुपए से था, जो अब बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने राज्यों को देश में डेटा सेंटरों के सतत विकास की योजना बनाने में मदद के लिए डेटा सेंटर इवेल्यूशन फ्रेमवर्क जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हेली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित आईयूकेएफपी बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई में आयोजित सीआईआई बिग पिक्चर सम्मेलन में श्री कुमार ने बौद्धिक संपदा को मजबूत करने, सतत राजस्व सुनिश्चित करने, अनुशासित निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर दर्शकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री कुमार ने बताया कि वेब्स का अगला संस्करण अक्टूबर 2027 में मुंबई में आयोजित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. We now go over live to listen to the Prime Minister's address.
2: उनकी मेहनत और पारंपरिक हुनर से जुड़ी पश्मीना की पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यहां के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं और यहां के उत्सव इन्हें संजोना और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है।
1: The newly inaugurated projects includes new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of 640 crore rupees. The modern terminal is spread over 23,800 square meters and is designed to handle 35 lakh passengers annually. The Prime Minister also dedicated to the nation the 298-kilometer-long Nimmu Padum Darcha Road, constructed by the Border Roads Organization, connecting Nimmu in Leh with Darcha in Himachal Pradesh through the remote Zanskar Valley. The road provides an alternative connectivity corridor to Ladakh, supplementing the Srinagar-Leh and Manali-Leh highways. Mr. Modi also inaugurated the 9-megawatt Hanu small hydroelectric

0: in the Greco-Roman finals at the Under-23 World Championships in Las Vegas today. Competing in the men's 55-kilogram category, More narrowly lost 12-13 to Georgia's Koba Karumidze in the final seconds of the bout. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall expected over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. The Met Department also said heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till the 21st of this month. The higher reaches of Doda district in Jammu and Kashmir experienced the season's first snowfall. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservations, says Supreme Court, upholds Madras High Court order. Home Minister Amit Shah says government is committed for betterment of tribals affected by Naxalism, distributes assistive devices to persons with disabilities. India's defence exports surge to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defence Minister Rajnath Singh. Upper reaches of Himalayan region receive season's first snowfall. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. And Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More creates history by clinching silver medal in Greco-Roman finals at Under-23 World Championships in Las Vegas. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको-रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा

0: मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार

0: से ये 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
4: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि

0: विधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
1: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
2: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि

0: बढ़ोतरी का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30. ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்டு. நேர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம்.
2: சேர்த்து வைத்த செல்வம்.

0: CCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: E20 पेट्रोल पति ये इवलो कंफ्यूशन
2: कंफ्यूशन वेंडा E20 टेस्टिंग ला अबनॉर्मल इंजन वियर ये दो कंडोपड़ी के फ्यूल सिस्टम मटेरियल जो E20 कंपैटिबिलिटी के टेस्ट पने रख रहंगे
1: अपो कंफ्यूशन नल ओनली कॉन्फिडेंस
2: E20 फैक्स नंबर इंडिया रसिन इन्ने संदेह पड़तम निर्वनंगलाल पुदनलन करे दीवली डपट्टते
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சென்னை வானொலி 100.1 FM கோல்டு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் திரைகானம் நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பாடல் சுந்தர புருஷன் படத்திற்காக சித்ரா குழுவினருடன் பாடியிருப்பது.

0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: इन्वेस्टिंग ஓட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: एसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
2: इन्वेस्टिंग ओड पाड़ तैयार।

0: திரைக்காணம் கேட்டீர்கள். தொடரும் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और कई केंद्रीय तथा राज्य मंत्रियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य आधारित प्रमाणीकरण और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़कर सशक्त किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कौमार भृत्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत ने अमेरिका के इलिनॉय राज्य के अरोरा क्षेत्र में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की कथित खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू विरोधी तथा नस्लवादी प्रकृति के साथ भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। पंजाब में मंगलवार को मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झूठा की दिन दहाड़े हुई हत्या और राज्य में मादक पदार्थों के विरोध में हो रहे बंद को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था की है।
3: कई राजनीतिक पार्टियों, किसान यूनियनों और व्यापारियों के संगठनों ने बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। यह बंद मारे गए नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह के पिता भीम सिंह की अपील पर किया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस और दूसरे इमरजेंसी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं। इस मामले में न्याय की मांग के लिए बनाई गई एक्शन कमेटी ने लोगों से बंद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। अभी तक राज्य में कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। बंद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका की लास वेगास में आज पुरुषों की 55 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर से हार का

0: prescribed service and eligibility requirements. Application in the prescribed format along with supporting documents and vigilance, integrity and service records must be forwarded through the proper channel to the Deputy General Manager Personnel. APIDA, 3rd floor, NCUI Building, 3 Institutional Area, August Kranti Mark, New Delhi, 110016. The last date for receipt of applications is 30 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, kindly look up the website at www.apida.gov.in. And now we have the Employment News in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ICAR राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में यंग प्रोफेशनल का एक पद रिक्त है। इसको भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। समेकित 30,000 रुपए प्रति माह का वेतन है। आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nbpgr.org.in। विधि और न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग, अपर विधायी परामर्शी, हिंदी शाखा, सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह क, राजपत्रित के 3 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.legislative.gov.in। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के जैव रसायन संभाग में GCOE परियोजना तथा CABIN परियोजना के अंतर्गत जूनियर रिसर्च फेलो और यंग प्रोफेशनल के एक एक पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iari.res.in। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर में फाइनेंस एनालिस्ट और फाइनेंस डाटा एनालिस्ट के एक एक पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.devnetjobsindia.org। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद में सह परामर्शदाता के 2 पद, प्रशिक्षु का 1 पद और युवा पेशेवर विनियामक मामले एवं नीति प्रतिपालन के 2 पद रिक्त हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.birac.nic.in। हथियार प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन अकादमी इच्छापुर में इलेक्ट्रिकल फिटर के 4 पद, मैकेनिकल फिटर के 14 पद, मशीनिस्ट के 6 पद, टर्नर के 7 पद, इलेक्ट्रोप्लेटर के 6 पद और हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के 3 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखिए वेबसाइट www.aweil.in। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में वैज्ञानिक ग्रेड ई 1 पद, उपनिदेशक प्रशासन का भी 1 पद और रिसर्च एसोसिएट ग्रेड 1 के 3 पद रिक्त हैं। योग्यता, अनुभव, आयु, श्रेणी, आवेदन प्रारूप और अन्य नियमों और शर्तों से युक्त विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL की इस वेबसाइट पर। पता है www.ndtlindia.com। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, और चलेंगे अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या लाए हैं आज हमारे लिए कुछ खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नज़र, और हम करेंगे याद उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी है जिनकी आज पुण्यतिथि या फिर जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संकेत में मैं हूं मुनीश शर्मा, और मेरे साथ हैं आज रेशमा तिवारी। नमस्कार रेशमा।
2: नमस्कार मुनीश, एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज। आई एम रेशमा तिवारी, एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुनीश, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, बट वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ।
2: हिंदूज कन्वर्टिंग टू इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स कैन नॉट क्लेम बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन, सेज सुप्रीम कोर्ट, अपहोल्ड्स मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए।
2: India's defense exports surged to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defense Minister Rajnath Singh.
1: Himalaya क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान.
2: And Indian wrestler Vishwajit Ramachandra More creates history by clinching silver medal in Greco-Roman finals at Under 23 World Championships in Las Vegas. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about World Students Day. So let me begin with this segment with a question, that is, what's the one thing that can turn an ordinary student into an extraordinary achiever? Is it intelligence? Is it hard work? Or is it the courage to dream big? Well, today we celebrate someone who believed that every student has the power to transform not just their own future, but the future of an entire nation. Today is World Students Day, celebrated in India on October 15, the birth anniversary of one of India's most inspiring personalities, Dr. APJ Abdul Kalam.
3: Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.
1: Well, coming back to your question, Reshma, you asked me, is it intelligence, hard work or courage to dream big? I think it's a combo of all three, which we find in the great persona of Dr. Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Kalam sahab ka janm hua tha 15 October 1931 ko Tamil Nadu ke Rameshwaram mein. Ek sadharan si prishthbhumi se aane ke bawajood, ve Bharat ke sabse sammanit वैज्ञानिकों में से एक बने, और आगे चलकर 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक छोटे से शहर से राष्ट्रपति भवन तक के सफर से भी कहीं बढ़कर है। डॉक्टर कलाम एक बेहतरीन एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई, और उनके इन्हीं योगदानों की वजह से उन्हें कहा गया भारत का मिसाइल मैन।
2: Yes, Manish, but yet what made him truly special was not just his scientific achievements or the highest office he held. It was his heart. He loved interacting with students. He believed in their potential, encouraged them to ask questions and inspire them to dream beyond their limitations. In fact, he considered teaching one of the most meaningful ways to serve the nation. Imagine

0: that a man who reached the highest constitutional office in India still found immense joy in standing before students and sharing ideas. That is the power of a true teacher.
1: Indeed, the power of a great and true teacher. Bharat mein, dosto, 15 October ko इसीलिए विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर कलाम के जन्मदिन और शिक्षा तथा युवाओं के प्रति उनके असाधारण समर्पण को सम्मान देने के लिए और हमें याद दिलाता है कि छात्र सिर्फ कल के नेता ही नहीं हैं, बल्कि वे आज के विचारक हैं, नवप्रवर्तक, सृजक और बदलाव लाने वाले लोग भी हैं। डॉक्टर कलाम का ये मानना था कि शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों, परीक्षाओं और रिपोर्ट कार्ड तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा हमें ये बताए, ये सिखाए कि सोचना कैसे है, सवाल कैसे पूछने हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाना है और एक जिम्मेदार इंसान कैसे बनना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, हालांकि भारत में इस तारीख को विश्व छात्र दिवस व्यापक रूप से मनाया जाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित ये कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं है।
0: But does a day need an official declaration to carry a powerful message? Absolutely not. The real importance of this day lies in the values it inspires: curiosity, creativity, discipline, kindness, and the courage to dream big. Did you know that Dr. Kalam was deeply involved in India's space research and missile development programs? His scientific contributions helped strengthen India's technological capabilities. And also, did you know that he was popularly known as the People's President because of his simple lifestyle, approachable nature, and special connection with ordinary citizens, especially students?
1: And not only that, Reshma, in fact, Dr. Kalam wrote many inspiring books for everybody. Aur jo unki prerandayak kitabein thi, jab unko yaad karte hain, to hume yaad aati hai unki atmakatha, Wings of Fire aur Ignited Minds, jo yuva bharatiyon ko अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरणा देती हैं। युवाओं के लिए डॉक्टर कलाम का एक बड़ा ही मशहूर संदेश था, बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और उन सपनों को हकीकत में बदलना। उन्होंने कहा था, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचारों से ही कार्य होता है।
0: इमेजिन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेंज वन थिंग इन योर स्कूल, कॉलेज और कम्युनिटी। What would it be? Would you plant more trees, help children who cannot afford education, reduce plastic waste, develop an invention, or create a more inclusive and caring environment? Because the world does not change only when famous people make big decisions. It also changes when ordinary people take small, meaningful actions. Remember, what marks may open certain doors, but curiosity, character, creativity, and perseverance help you move forward in life. And to every student who has ever felt that their dreams are too big or their circumstances are too difficult, remember this. Your starting point does not have to determine your destination.
1: बिल्कुल, और इस खास मौके पर आइए हम उन शिक्षकों को याद करें आज जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन माता-पिता को जो हमारा साथ देते हैं, और उन गुरुओं को जो हमें हमारी खूबियों को पहचानने में मदद करते हैं। हर आत्मविश्वासी छात्र के जीवन में अक्सर कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसने छात्र के खुद पर विश्वास करने से पहले ही उस पर भरोसा किया हो। आज किसी ऐसे शिक्षक को धन्यवाद आप जरूर दें जिसने आपको प्रेरित किया हो। शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों में डर के बजाय जगाएं जिज्ञासा, और सिर्फ जवाब मांगने के बजाय उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पिता याद रखें कि हर बच्चे में कोई ना कोई खास हुनर होता है, सीखने की अपनी अलग अलग गति होती है, तो एक ऐसा सपना भी होता है जिसे हमें सुनना और समझना चाहिए। तो सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि सीखना किसी डिग्री, सर्टिफिकेट या क्लासरूम के साथ खत्म नहीं हो जाता, क्यों रेशमा?
0: Right, and as Dr. Kalam's life reminds us, knowledge becomes truly powerful when it is combined with action, integrity, and a desire to contribute to society. And now, dear listeners, as we come to the end of this segment, let us remember that World Students Day is more than a celebration of a birthday. It is a celebration of young minds. It is a celebration of questions that lead to discoveries, failures that teach us valuable lessons, and dreams that give us the courage to keep moving forward. Dr. APJ Abdul Kalam showed us that greatness does not depend on where we begin, but on how sincerely we learn, how bravely we dream, and how meaningfully

0: With the celebration expanding beyond India, the organizers aim to establish reunionist culture as a meeting point between Reunion Island, India, Bangladesh, and the wider Indian Ocean region, strengthening cooperation among cultural institutions and artists. For Parikrama, this is Bibin Asnath, Akashwani News, Puducherry.
1: तो आइए दोस्तों पुदुचेरी के साहिलों से ले चलें आपको मध्य प्रदेश के जंगलों में, जहां करीब 100 साल बाद जंगली भैंसों को फिर से बसाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में तो इस दिशा में एक अहम कदम उठा भी लिया गया है।
2: मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के सुपखार क्षेत्र में 8 जंगली भैंसों को छोटे बाड़े से निकालकर 17 हेक्टेयर के बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। ये सभी भैंसे असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए हैं। करीब 2200 किलोमीटर का सफर तय कर इन्हें मध्य प्रदेश लाया गया था। इनमें 6 मादा और 2 नर भैंसे शामिल हैं। इन्हें पहले छोटे बाड़े में रखा गया था ताकि ये यहाँ के मौसम और वातावरण के अनुकूल हो सके। अब इन भैंसों को बड़े बाड़े में रहने के साथ साथ धीरे धीरे प्राकृतिक आवास में बसाने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के जंगलों से जंगली भैंसे करीब 100 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। वन विभाग ने अगले 3 साल में 50 जंगली भैंसों को यहां बसाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल से प्रदेश में जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। परिक्रमा के लिए अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
3: The dwellers of tribal hid Sunabera forest of Nuapara district are all eager to witness the Chhatar Yatra of Ma Sunadei, the local goddess of the area. Chhatar Yatra of Ma Sunadei is the most sacred and high-profile affair for the Chakotia Bhujia tribe of Sunabera. More from our correspondent.
4: Goddess Sunadi is the presiding deity of nearly 52 villages and hamlet of Sunabera area. Ma Sunadi's annual festival is celebrated for 15 days in the month of Ashwin.

0: विक्टर बनर्जी को और उनके चाहने वालों को हमारी ओर से उनके जन्मदिन की बधाई। और दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो अनुमति दीजिए मुनीश शर्मा और रेशमा तिवारी को, कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, दीजिए हमें आज्ञा।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख

0: मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय वायुसेना नौसेना के लिए टॉर्पीडो वर्णास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट PG 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमेरिका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: नेरम मालै 6:05 ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் 100.1 FM கோல்ட்.
3: இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாமா?

0: निवेश, रोजगार तथा विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने में किस तरह योगदान दे सकती है।
1: भारत का विनिर्माण क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 16-17% है। यह क्षेत्र 2,70,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। सरकार के राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का लक्ष्य वर्ष 2035 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना है। इसके लिए उत्पादन क्षमता के विस्तार के साथ साथ आधुनिक तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेश के अनुकूल वातावरण की जरूरत है। विनिर्माण क्षेत्र की संरचना में भी बदलाव आ रहा है। मध्यम और उच्च तकनीक वाले उद्योगों की हिस्सेदारी विनिर्माण के कुल मूल्य संवर्धन में 46.3% तक पहुंच गई है। यह दर्शाता है कि भारतीय उद्योगों में तकनीक आधारित और अधिक मूल्य वाले उत्पादन का महत्व तो बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि नए उद्योगों को तेजी से स्थापित करने के लिए किस तरह की व्यवस्था चाहिए। इसका एक समाधान है प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क। इसे आसान भाषा में समझे तो ऐसे औद्योगिक पार्क जहां उद्योग शुरू करने से पहले ही जमीन, सड़क, बिजली, पानी, जल निकासी और दूसरी साझा सुविधाएं विकसित कर दी जाती हैं। कई मामलों में जरूरी मंजूरियों की प्रक्रिया को भी सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से आसान बनाया जाता है। इससे कंपनियों को बुनियादी सुविधाएं तैयार करने में कम समय और संसाधन लगाने पड़ते हैं। वे अपने निवेश और उत्पादन संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे सकती हैं। इसी सोच को देशव्यापी स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भव्य योजना लाई गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में इस योजना को मंजूरी दी और 10 अप्रैल 2026 को इसे अधिसूचित किया गया। इसके लिए 33,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी डेवलपर्स की साझेदारी से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षमता बढ़ाना, कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और निवेशकों के सामने आने वाली शुरुआती बाधाओं को कम करना है।
0: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में हो रहे बदलाव के बीच ये व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कंपनियां ऐसे स्थानों को प्राथमिकता देती हैं जहां जमीन, बिजली, परिवहन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर स्पष्टता हो। इस तरह भव्य भारत को निवेश के लिए तैयार औद्योगिक केंद्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। आइए सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: भारत में औद्योगिक विकास की रणनीति समय के साथ विकसित हुई है। शुरुआती दौर में औद्योगिक एस्टेट और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ विकसित किए गए। इनका उद्देश्य औद्योगिक जमीन, साझा बुनियादी सुविधाएं और नियामकीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराना था। फरवरी 2026 तक भारत में 370 अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र थे। इनमें 7,82,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ और 31,70,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। इसके बाद औद्योगिक विकास की सोच अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर बड़े और एकीकृत औद्योगिक केंद्रों तक पहुंची। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी NICDP के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली, पानी, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और शहरी सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। गुजरात का धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, महाराष्ट्र का शेंद्र बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, मध्य प्रदेश का विक्रम उद्योगपुरी और उत्तर प्रदेश का इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा इस तरह की एकीकृत योजना के उदाहरण है। 14 अक्टूबर 2026 तक इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पर 4,164 औद्योगिक पार्कों को सूचीबद्ध किया जा चुका था। अब भव्य इसी दिशा में एक और कदम है। इसका लक्ष्य देश भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। योजना के अंतर्गत औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इन पार्कों में आंतरिक सड़कें, बिजली आपूर्ति, पानी के नेटवर्क, जल निकासी और साझा अपशिष्ट जल शोधन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। भूमिगत यूटिलिटी कॉरिडोर का प्रावधान भी किया गया है। इससे बिजली, पानी और दूसरी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं के रखरखाव में सुविधा होगी और बार बार खुदाई करने की जरूरत कम हो सकेगी। योजना में श्रमिकों की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के लिए आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और कौशल विकास केंद्र जैसी सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान है। भव्य को वित्त वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों में लागू किया जाएगा। जुलाई

0: 2026 में सरकार ने 3 रासायनिक पार्कों के लिए भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दी। इन पार्कों का उद्देश्य रासायनिक उद्योगों को साझा सुविधाएं और पर्यावरण सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
1: इस प्रकार भारत की औद्योगिक नीति अब केवल जमीन उपलब्ध कराने से आगे बढ़कर तैयार ढांचे, बेहतर संपर्क और आसान प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर जोर दे रही है। आइए सुनते हैं इस पर विशेष रिपोर्ट।
2: भव्य जैसी योजनाओं के महत्व को समझने के लिए गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र को देखा जा सकता है। धोलेरा को एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां सड़कें, बिजली, पानी, गैस, जल निकासी, डिजिटल नेटवर्क और शहरी सुविधाओं की योजना शुरुआत से ही एकीकृत तरीके से बनाई गई है। यहां बिजली, पानी, गैस और जल निकासी से जुड़ी व्यवस्थाओं को साझा भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से विकसित किया गया है। इससे उद्योगों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, जिनकी मदद से वे तेजी से अपना संचालन शुरू कर सके। धोलेरा में सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और रक्षा और ऊर्जा उपकरणों के निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, जैव प्रौद्योगिकी और भारी इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र को बंदरगाहों, हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे और समर्पित माल ढुलाई गलियारे से जोड़ने की योजना भी महत्वपूर्ण है। बेहतर संपर्क से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार उत्पादों को बाजार पहुंचाने में मदद मिल सकती है। सरकारी पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार धोलेरा में 11 भूखड़ों में कुल 495 एकड़ जमीन आवंटित की गई। इसमें 97,328 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता और 6,000 से अधिक रोजगार के अवसरों की संभावना बताई गई है। यहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर परियोजना और रिन्यू पावर की सौर मॉड्यूल विनिर्माण परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए भी जमीन आवंटित की गई है। धोलेरा का उदाहरण बताता है कि उद्योगों को केवल जमीन देना पर्याप्त नहीं है, उत्पादन, परिवहन, ऊर्जा, पानी और शहरी सुविधाओं के बीच समन्वय भी जरूरी है। भव्य इसी प्रकार के औद्योगिक इकोसिस्टम को देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित करने की व्यापक पहल है। MSMEs के लिए साझा सुविधाओं की उपलब्धता विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि छोटे उद्यमों के लिए अपनी अलग औद्योगिक बुनियादी सुविधाएं विकसित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तैयार औद्योगिक परिसर उन्हें कम समय में उत्पादन शुरू करने का अवसर दे सकते हैं। भव्य योजना इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इसके माध्यम से औद्योगिक पार्कों को उत्पादन के लिए तैयार केंद्रों के रूप में विकसित करने, निवेशकों की शुरुआती बाधाएं कम करने और देश की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
1: तो ये था आज का विश्लेषण, जिसका विषय था भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य और निवेश के लिए तैयार औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में भारत के प्रयास। इसकी वास्तविक सफलता तो इस बात से तय होगी कि औद्योगिक पार्क कितनी कुशलता से विकसित होते हैं, उद्योगों को आवश्यक सुविधाएं कितना समय पर मिलती हैं और निवेश के साथ रोजगार के अवसर किस सीमा तक बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के विश्लेषण को देते हैं यही विराम। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है श्रेया पाठक ने और प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी।
3: और अब सुनिए संस्कृत में समाचार।
4: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। लद्दाख क्षेत्रे विकासस्य नूतनः अभ्युदयः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कृतं 300-3,000 कोटि रूप्यकाणां 5 विकासपरियोजनानां राष्ट्राय समर्पणम्। एशियन गेम्स स्पर्धासु अद्भुत प्रदर्शनं कृतवद्भिः भारतीय दलस्य क्रीडकैः सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उत्साहवर्धकः संवादः। सर्वोच्चन्यायालयस्य ऐतिहासिकः निर्णयः। धर्मान्तरितेभ्यः नागरिकेभ्यः वंचित वर्ग आरक्षण लाभो निषिद्धः। मद्रास उच्चन्यायालयस्य निर्णयः शीर्ष न्यायालयेन समर्थितः। अमेरिका देशस्य इलिनॉय राज्ये हिंदू मंदिरस्य विध्वंस षड्यंत्रवार्ताम् अधिकृत्य भारतेन प्रगाढा चिंता व्यक्ता। स्थानीय प्रशासनं समाहूय मंदिराणां सुरक्षा प्रबंधनाय दृढः आग्रहः च विहितः। अपि च लॉस वेगास नगरे विश्वमल्लस्पर्धायाः ग्रीको रोमन वर्गे भारतीय मल्लः विश्वजीत रामचंद्र मोरे रजत पदकमवाप्य देशस्य

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य। ए के बी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन।
0: Yes, benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी। निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ। देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ $44.4 अरब बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index dropped nearly 0.4% and the small-cap 100 index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8%, and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%, power slipped more than 1.8%, and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced, and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया, वह निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ। कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं, तो इन तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है। ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है। इस उछाल में के पीछे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है
1: जी।
2: तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। आपको मालूम होगा कि कल सरकार ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका। सो उसी का एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी उछाल आया है, और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी, वो आज वो काफ़ी गिरावट में आई। उसका कारण भी ये है कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में, और दूसरी बात ये है कि जो रुपया जो है और रुपए में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है। पर अगर आप ये समझे कि आज की जो मजबूती आप देखी, ये कोई अगले दिनों का संकेत

0: है, ये मैं नहीं मानूंगा। ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी और ये एक रिकवरी फेस है, और रिकवरी फेस का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है।
1: सर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे फेस प्रेशर डिस्पाइट द रैली इन द मार्केट। So, and I have two questions for you.
0: Sure.
1: Both of them I'll question right now only. So, does this imply that investors are concentrating their capital only in select large cap companies? First one. And what signal should retail investors take from this particular divergence?
0: So, I think what the investors are doing is they are pulling their money out of the small and the mid cap stocks. Because the small and the mid-cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. Mm. So they are pulling their money out. They are also reinvesting in the large cap stocks and taking positions and keeping their powder dry, because we are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into a major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid-cap and the small-cap profit booking has led to the surplus, which is going into the large-cap, and the large-cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
2: AKB, आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स ने मार्केट को काफी सहारा दिया, आपने भी आईटी शेयर्स का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्र में काफी कमजोरी देखी जा रही, तो इन्हीं सेक्टर्स में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ऐसा फेज आपको आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीजों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
0: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है। मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है बहुत क्वार्टर के बाद एआई की जो चपेट आईटी सेक्टर में आई थी उसको उसके ऊपर जो इंडियन आईटी सेक्टर की जो बायोन्सी जो रेजिलियंस जो है उसको दर्शा रहा है, और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही हैं सब आईटी कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरह से हम आगे आईटी सेक्टर को देखेंगे उसको हमें ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर रहेगा मैं समझता हूँ।
1: Also, Mr. Bhattacharya, PSU bank performance. I mean, what's your opinion about PSU bank performances nowadays? What's
0: well, I think what's happening is that the PSU banks have done very well since the prompt corrective action plan was put in place by the Reserve Bank of India in 2017. Over the next 3-4 years, the PSU banks have done very well in reducing their gross non-performing assets. Even their net non-performing assets have come to a very, very comfortable level. IDBI Bank, which is also considered a public sector bank, has reached a point where it could get a reasonable premium on the prevailing market price to be sold to a foreign investor. So I think public sector banks have done well. They are seeing credit visibility. The interest margin, the net in the margin NIM, net income interest margin, is still very strong as comparable with the private sector banks. So I think public sector banks are doing reasonably well.
1: Now shifting our focus to Tech Mahindra result. Tech Mahindra today reported its financial results for the second quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue increased by 15.6% on an annual basis to 16,180 crore rupees. The firm's net profit rose by nearly 33% to 1,585 crore rupees year over year. The board also approved an interim dividend of 15 rupees per share.
2: चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 13.21% बढ़कर 13,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड में अधिक तेजी देखी गई। पिछले साल के 2,13,000 करोड़ रुपए से 24.22

0: प्रतिशत बढ़कर ये 2,65,000 करोड़ रुपए हुआ। इस अवधि के दौरान प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी संग्रह में 51% से अधिक का उछाल आया और ये 46,840 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एकेबी जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं मौजूदा व्यवस्था में, ऐसा आपको लगता है कि तमाम चीजें बदलने, खासतौर पर जब हम कर संग्रह की बात करते हैं, सरकार नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही, नए तरीके लेकर के आ रही, इससे काफी आंकड़ों में तेजी आई, बढ़ोतरी आई है और नई चीजें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं?
1: देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो टैक्स कलेक्शंस जो केंद्रीय सरकार करती है, उस टैक्स कलेक्शन में जो एक बायोंसी हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो अगर आप नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो वृद्धि दर जो है, ये ना कि सिर्फ कॉरपोरेशन टैक्स से हुई है बल्कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स से भी हुई है। इसका मतलब ये जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो है वो जब टैक्स बेस जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और मैं यही मानता हूँ कि अगर यही ट्रेंड अगले 6 महीने में बरकरार रहे तो सरकार की जो ग्रोथ रेट जो बजट में दिखने को आया था वो ग्रोथ रेट का लक्ष्य वो पूरा करके उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। और जैसे हमने अभी भी कहा कि जो IDBI बैंक की जो विनिवेश से जो पैसा जो आएगा करीबन 32,000 करोड़, उससे भी काफ़ी सरकार के खजाने को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सरकार की जो वित्तीय जो घाटा का जो एक चैलेंज हर साल में आता है, मुझे लगता है कि इस साल हालांकि वैश्विक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पर उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस बार जो केंद्रीय सरकार की जो पब्लिक फाइनेंस जो है, जो वित्तीय घाटा जो है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए कोई ज़्यादा असुविधा नहीं होगी।
0: सितंबर में भारत में कुल श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार इनसे रोजगार संकेतकों में सुधार प्रदर्शित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमबल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। कुल श्रम बाल भागीदारी दर बढ़कर 55.5% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पिछले साल के मुकाबले मामूली गिरावट आई है। महिलाओं की भागीदारी में पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अक्टूबर 2025 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 52.7% हुआ है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात अक्टूबर 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी में सुधार देखा गया। कुल बेरोजगारी दर पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.25% अंक घटकर 5% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 6.8% पर लगभग स्थिर है। एकेबी, सितंबर में जिस तरह हम आंकड़े ये देख रहे हैं, 5% रह गई है, रोजगार के मोर्चे पर भी सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं, इन आंकड़ों से आपको क्या नजर आता है, कैसी परिस्थिति इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से?
1: देखिए, ये जो डेटा जो पॉइंट जो आपने अभी बताया है, उसमें ये लगता है कि दो चीज मुझे साफ नजर आ रही है। एक तो है बेरोजगारी दर जो है उसमें घाटा हुआ है, वो एक इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरी बात, उससे भी ज़्यादा बेहतर अच्छी खबर ये है कि जो वुमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, उसमें हमें इंक्रीज दिखी है। और तीसरी बात है कि जो रूरल लेबर फोर्स जो है उसमें अर्बन से ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों चीज़ हमारी जो जॉब सिचुएशन जो है उसके लिए एक अच्छा एक इंडिकेटर है, सिग्नल है इकोनॉमी के लिए, और हमें इसको ट्रैक करना चाहिए।
2: एंड सर, जस्ट टू ऐड देयर, शुड दिस बी व्यूड एज जेन्युइन इंप्रूवमेंट इन विमेन्स एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस?
1: वेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड। देयर इज अ डेफिनेशनल चेंज इन द वे वी आर काउंटिंग वुमन लेबर पार्टिसिपेशन। द हाउस होल्ड वर्क दैट वुमन डू, दैट इज ऑल्सो नाउ बी इंक्लूडेड in the jobs that have been created. Right. So to a great extent it may not be reflective of organized sector employment, but it may be reflective more of the unorganized sector, the household sector employment that people

0: करते हैं उनके लिए एक बहुत एक पॉजिटिव साइन है
1: जी. Now we'll reflect on the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. U.S. Ambassador to India Sergio Gore has described India as an unmatched market for American companies, and he was speaking at this Bloomberg New Economy Forum today in New Delhi. Mr. Gore highlighted the growing cooperation between the two countries across sectors. This included defense, IT and trade. Mr. Gore also underlined that India is well positioned for AI and technology development on its own soil, adding that partnerships with leading American companies would be mutually beneficial. He expressed confidence that India and the U.S. would conclude a trade deal, saying the two sides had made substantial progress despite the complexity of the negotiations. Meanwhile, Ambassador Gore said that the U.S. President Donald Trump is expected to make a decision within the next 10 days on sanctions provisions that could affect countries buying Russian oil and gas.
2: We have ongoing discussion on that. So the sanction options that Congress passed, they're not targeted at any individual country. It just happens that India does fall in one of those buckets, along with a lot of other countries. The goal is not to punish anyone. The goal is to try to bring an end to this war. I do think the president will make a determination on that over the next 10 days.
1: The National Payments Corporation of India, NPCI, has postponed the implementation of the merchant discount rate, MDR, on select person-to-merchant UPI transactions. MDR, which was earlier scheduled to come into effect from today, will now be implemented immediately after Diwali. NPCI has said that the implementation date will be notified separately.
3: एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली. चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स करीब 7.6% लुढ़क गया. जापान का निक्केई 4.9% नीचे आ गया. यूरोपीय बाजारों की बात करें तो ताज़ा रिपोर्ट मिलने तक जर्मनी का इंडेक्स 0.4% गिर गया था, जबकि लंदन का फुटसी 100 इंडेक्स 0.7% ऊपर था. आर्थिक मोर्चे पर अगस्त में ब्रिटेन की सकल घरेलू उत्पाद दर में मासिक आधार पर 0.1% की वृद्धि हुई. इसमें उत्पादन क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी ने सेवा और विनिर्माण क्षेत्र की कमियों को दूर किया है. हालांकि बढ़ोतरी जुलाई में दर्ज हुई 0.4% की तेजी के मुकाबले धीमी रही. वार्षिक आधार पर अगस्त में जीडीपी में 2.1% की बढ़त हुई, जो अगस्त 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है. एकेबी, आज कई दिनों बाद हमने साउथ कोरिया के इंडेक्स में तेजी देखी है और यह तेजी भी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते नजर आई. हालांकि एक तरफ आईटी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन चिप सेक्टर नेगेटिव खबर लेकर गया, जबकि कुछ समय पहले तक लगभग दोनों एक ही वे में पैरेलल चलते थे.
0: देखिए, जो मार्केट में जो चिप सेक्टर की जो ट्रबल्स जो हैं, चैलेंजेस हैं, वो अभी कहीं नहीं है. और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल मामला है ये, और जो अगर आप बारीकी से देखें तो साउथ कोरिया कहें या जर्मनी कहें या यूनाइटेड किंगडम की जो स्टॉक मार्केट को देखें, तो वो उनके इकोनॉमी की जो जो जो दुर्बलता है उसको रिफ्लेक्ट दर्शाती हैं. हालांकि अगर आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन जो उन्होंने अपग्रेड किया है, उसी के लिए भी थोड़ा बहुत जो भारत में जो स्टॉक मार्केट ने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका भी कारण एक है. और इनकी जो एशियन और बाकी एशियन और यूरोपियन मार्केट में जो ग्रोथ की जो आउटलुक उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रही है, उसके लिए भी उनके स्टॉक मार्केट में ये धीमापन दिख रहा है.
3: ब्रिटेन के लिहाज से एक अच्छी खबर वहाँ पर ये देखने को मिली कि वहाँ जीडीपी मासिक आधार पर 0.1% की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे समय जब अमेरिका की स्थितियाँ ब्रिटेन और यूरोप को लेकर काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं, तो ब्रिटेन के लिए कितनी अच्छी खबर इसे माना जा सकता है.
0: इतने बहुत बहुत महीने बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, दुर्बलता जो थी, उसके बाद ये रिकवरी हुई है. मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक इकोनॉमी के एक बाउंस बैक वो है, और इसमें हम ज़्यादा कोई रीडिंग नहीं करना चाहिए.
1: टर्निंग आवर अटेंशन और स्टेइंग विद यूएस मार्केट्स, Wall Street ended lower yesterday, weighed down by semiconductor stocks and a hotter than expected inflation reading. Among the major indices, the Nasdaq Composite plunged 1.9% and the S&P 500 shed 1.1%. Dow Jones Industrial Average fell by 0.1%. On the economic front, the Consumer Price Index CPI inflation climbed to 3.7% in September from 3.4% in August. And this is according to data released by the US Bureau of Labor Statistics. So, Mr. Bhattacharya, Fed is going to meet end of this month. How do you think this latest, the latest CPI will impact that?
0: Well, the indications are very clear.

0: The last review, the Fed had clear given indications of what it wants to do, and if inflation rate going up and the bond market rates again going up and remaining strong, there is a strong possibility that the Fed might do what is expected of it to push up the rate very, very marginal point. So I wouldn't be surprised if the Fed goes in for a higher rate.
1: राइट
2: right. लेकिन जिस तरह से महंगाई दर, पेट्रोलियम के दाम और ब्याज दरों में जो तेजी का माहौल बन रहा है यूएस में, उससे तो परिस्थितियां कुछ और ही नजर आती हैं।
0: बट सवाल यह है कि इन्फ्लेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है या ग्रोथ? इस समय इन्फ्लेशन को रोकना फेड के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चुनौती है, क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन टारगेट है 2% का है और इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 3% के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल बैंक की जो जो जो जो मैंडेट जो है उसको पूरा करने के लिए, वो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, वो शायद इंटरेस्ट रेट में थोड़ी बहुत ऊपर कर सकने का चांसेस ज़्यादा ही दिख रहे हैं।
1: And global crude oil prices, they eased today. Brent crude was trading 1.7% down at $104.21 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 0.2% down at $94.95 per barrel at the time when they were writing the report.
2: तो AKB crude oil पर आपके क्या opinion होंगे?
0: Crude oil में तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम थोड़े घटते हैं तो हमारी जो जो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। ये स्टेबिलिटी आएगी और हमारी ऑयल कंपनीज़ की जो जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसमें भी अच्छा एक प्रदर्शन कर सकती है। तो पर स्टॉक मार्केट की तरह क्रूड ऑयल प्राइस के भी वॉलेटाइल है, ये ऊपर नीचे जा रही हैं। इस वक्त इनका जो जो लेवल जो है वो अभी भी हमारे देश के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसको और भी नीचे आना चाहिए अगर हमारी इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा सके।
2: और श्रोताओं, भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% गिरकर 1,45,942 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 2.6% लुढ़ककर 2,08,275 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। एकेबी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार, धन्यवाद।
1: And now before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1,500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline. And that's it in this particular edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से

0: लद्दाख में संपर्क सुविधाएं और मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।

मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत में सितंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ। वहीं शहरी महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
2: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
3: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष

संक्षिप्त पुनरीक्षण SSASSR करने का निर्देश दिया है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इससे पहले आयोग ने छूट गए पात्र मतदाताओं, युवाओं और पहली बार मतदान योग्य लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश

0: काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से 2025-26 में बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक भूमिगत बुनियादी ढांचे की योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण में सहयोग किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इसका उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करना है। अमेरिका के लास वेगास में विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today dedicated to the nation 5 major development projects worth around ₹3,350 crore in Ladakh through video conferencing. The 5 projects will strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
1: The newly inaugurated projects include the new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport in Leh, the 298-kilometer long Nimmu Padamdarcha Road, the 9-megawatt Hanu Small Hydroelectric Project, the 66-kV double-circuit Dahanu-Khalsi Transmission Line, India's first petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh, and 40 water bodies developed across 40 villages under Project Him Sarovar. Prime Minister Modi interacted in New Delhi today with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games concluded in Japan earlier this month. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi described the recent Asian Games as memorable for India, highlighting the outstanding performances of Indian athletes across several sporting disciplines. India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The Supreme Court has sought responses from the Centre and the National Medical Commission on a plea seeking greater transparency in the answer key and response disclosure process for NEET PG 2026. A bench of justices, P.S. Narasimha and Alok Arade, issued notices to the authorities and tagged the petition with pending pleas. The petitioners have sought access to the questions and answers options displayed to each candidate, their recorded responses and the correct answers, saying the existing system does not allow candidates to independently verify their evaluation. NEET PG 2026 was conducted on August 30. A supplementary examination was held on September 5 for candidates affected by a technical disruption.

0: disruption at an examination center in Jaipur. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today launched the National Strategic Trade Command Center, NSTCC, in New Delhi. NSTCC is a strategic initiative aimed at strengthening the monitoring, analysis and governance of India's international trade ecosystem through integrated data analytics and evidence-based decision-making. The Ministry of Commerce and Industry said that the command center has been conceptualized to provide senior policymakers and government officials with a consolidated view of India's trade performance, export promotion schemes, regulatory approvals, application processing, and operational indicators. India has expressed deep concern at reports of an alleged plot to carry out a mass shooting targeting a Hindu temple in Illinois in US. In response to media queries regarding the attempted mass shooting incident in the US, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the reported anti-Hindu and racist nature of the alleged plot, including references to violence against people of Indian origin, is particularly disturbing. In Pakistan, 34 children and a teacher were killed when the roof of a private school collapsed in Peshawar today. Peshawar Capital City Police Chief Mia Sayed said the incident occurred in their colony in the congested inner city area. 30 students were present in classrooms on the upper floor of the Al Khair School when the roof collapsed. Police said the roof of the three-story building was poorly constructed. And Indian wrestler Vishwajit Ramchandramore has clinched a historic silver medal in men's 55 kg Greco-Roman category at the Under-23 World Championships in Las Vegas, US today. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் இரவு 8:10.
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं गौरा धवनलाल।
3: नमस्कार, हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का नाम है जन सेवा से देश सेवा। हमारी आज की थीम है उद्यमिता और नए भारत की अर्थव्यवस्था। फोकस एरियाज रहेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन। तो आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले स्वागत है मिस्टर अशोक चंडाक, जो प्रेसिडेंट IESA में हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सेक्रेटरी जनरल एंड CEO PFT चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद।
3: आपसे शुरुआत करते हैं अशोक, एंड आई नो कि सेमीकंडक्टर्स इज आपकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, आपके एरिया ऑफ पैशन भी है। तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसको सेटअप किया था, तो इसका उद्देश्य क्या था?
4: सबसे पहले मैं तो एक लाइन आम भारतीयों के लिए कहूंगा कि सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं, कार चलाते हैं, टीवी देखते हैं, अस्पताल में हमारे इलाज की मशीनों से स्कैनिंग किया जाता है, इस सबके पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए आज खेती, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रक्षा, परिवहन, अंतरिक्ष जैसे सभी क्षेत्रों में चिप्स की जरूरत है। और ये सिर्फ तकनीक का विषय नहीं है, लेकिन ये भारत की अग्रसर होने की बात है। अब सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य जो है, ये शुरू हुआ था 6 साल पहले, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से बोला गया। उसका पॉलिसी नंबर 1 भी अनाउंस हुआ था, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसका प्रमुख उद्देश्य है सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना। वैसे तो भारत काफी लंबे समय से चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर करने में लगा हुआ है, लेकिन ये सारा जो काम है ये दूसरे देशों पर निर्भर होता है और दूसरे देशों की कंपनियों के लिए किया जाता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन उसके वजह से हमारा जो चिप निर्माण का खुद का जो काम है वो आगे कभी बढ़ा नहीं था। और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इसमें पहले चरण में 76,000 करोड़ का 76,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और अभी दूसरा मिशन भी चालू हुआ है कुछ महीनों पहले, जिसे सेमीकॉन इंडिया 2.0 कहते हैं। इसमें अभी एक्सपांशन किया गया फुल इकोसिस्टम के लिए सपोर्ट करने के लिए, जिसमें चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मशीन्स, मटेरियल्स, R&D और स्किलिंग, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो एक शॉर्ट में कहूंगा अभी कि पहला तो आपूर्ति में भरोसा करना है, इसलिए हमारे चिप उद्योग को यहाँ पर ग्रोथ करना, उनके लिए सपोर्ट करना जरूरी है।

0: दूसरा आर्थिक विकास। कोई भी देश के लिए सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि इस पर काफी चीजें निर्भर करती हैं और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियों को नए अवसर प्रदान होंगे, और तीसरा हमारी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, इसको भी बढ़ाना है। तो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम भी दुनिया की तरह चिप बनाते रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम उन क्षेत्रों को मजबूत करें और जहां पर भारत की क्षमता विकसित हो सकती है और भारत दुनिया की जरूरतें भी पूरा कर सकता है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये तो जानते हैं कि सरकार का फोकस चिप मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है और अलग अलग स्कीम्स भी इनको इनकरेज करती हैं, चाहे वो इनोवेशन की हो, चाहे टिंकरिंग लैब्स हो, मगर इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा रहा है? और आई थिंक अब तक तो थोड़ी जर्नी तो हम तय कर चुके हैं, और कुछ चैलेंजेस इसके रिस्पॉन्स में जहाँ पर और मदद चाहिए इंडस्ट्री को इसके लिए?
2: देखिए, अभी अशोक जी ने बहुत अच्छा पूरा इसको विस्तार से बताया, और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेमीकंडक्टर मिशन या हमारे जो अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इनोवेशंस को अपने डेली एंटरप्राइजेज में और कैसे उसमें एंटर कर सकें, इसके बारे में इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इसमें जागरूक है। और जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल में जो पिछले 2-3 साल में एक सेमीकंडक्टर मिशन का एक इकोसिस्टम देश में क्रिएट किया है, सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया है, उसमें सारे जो इंडस्ट्री है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
0: बात ऐड करूंगा यहाँ पर
1: जी जरूर।
0: कि जो टोटल अभी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो 12 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, इसमें जो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, इसमें करीबन 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, और उसमें 5 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हो रहे बल्कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ 24 चिप डिजाइन की प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है।
1: आइए सुनते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर ये रिपोर्ट।
3: सेमीकंडक्टर यानी चिप आज की लगभग हर तकनीकी चीज का अहम हिस्सा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना है। इसका लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के तहत ध्यान सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, इसमें चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन यानी फैब, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण पूरी श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक उद्देश्य चिप डिजाइन है। भारत में पहले से ही कई इंजीनियर सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्टार्टअप्स और डिजाइन कंपनियों को टूल्स, फाउंड्री सेवाओं और अन्य सहयोग के जरिए समर्थन देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य देश में चिप डिजाइन उद्योग को तेजी से बढ़ाना और स्वदेशी बौद्धिक संपदा यानी आईपी विकसित करना है। यह मिशन केवल तकनीकी तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा रोजगार और कौशल विकास से भी जुड़ा है। मिशन में शोध, वैश्विक सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रतिभा विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार निवेश सहायता, तकनीकी साझेदारी और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कदमों पर काम कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन केवल चिप बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा प्रयास है।
1: सो जैसे अभी डॉक्टर मेहता ने कहा कि हम जब बात करते हैं ये लॉन्ग टर्म है, आई थिंक इंसेप्शन से प्रोडक्शन, और अभी आपने अशोक प्रोडक्शन की बात भी करी, मार्केट में आ गए हैं, आर दे बीइंग यूज्ड, फीडबैक, बिकॉज ये पूरा सर्किट होता है टू ऑल्सो कैप्चर द मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि वो कहते हैं ना हिट द ग्राउंड रनिंग, कब हम लोग इस स्तर पे पहुंचेंगे कि हमारे जो इंटरनली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली हमारी काफी सारी नीड वो सेटिस्फाई कर रहे हैं?
0: इसमें थोड़ा और समय लगेगा। जैसे कि मैंने बताया 5 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके, लेकिन उनके पास भी अभी मैक्सिमम जो सप्लाई होगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रही है अभी, और बाकी 7 प्रोजेक्ट और भी बनेंगे, 1-2 साल में वो ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे जो देश की कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर की, उसकी पार्शियल क्षमता से हम पूरी कर पाएंगे। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि 2030 में भारत में करीबन $103 बिलियन का सेमीकंडक्टर का डिमांड उभर कर आ रहा है। आज हम 2026 की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की डिमांड करीबन $55 बिलियन का है और सप्लाई less than $1 बिलियन, और इवन उतना भी नहीं है। तो जैसे ही हमारे ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, हम देख सकते हैं कि करीबन $10 से $20 बिलियन का जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफिल होगा और बाकी हमें फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो परियोजनाएं शुरू होगी प्रोडक्शन में, वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है बाकी अदर कंट्रीज में, जिसे मैं कहता हूं डिपेंडेंसी बदल के बन जाएगी इंटरडिपेंडेंसी। मतलब हमें कई बार ये देखने में मिलता है, सुनने में पड़ता है कि कुछ कंट्रीज आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, वो अपने अपने लिमिटेशंस लगाते हैं कुछ देशों के लिए। हमें उस

0: बात से था इसका छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन पर भी कई देश डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें करीबन हजारों टाइप की चिप लगती है कंट्री में और कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो पूरे तो 100% हमारा इसमें सेल्फ रेजिलियंस नहीं होगा, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि करीबन 20% का हमारा 2 साल 3 साल में लक्ष्य पूरा जरूर हो जाएगा इसमें। और साथ में अभी जो नया स्कीम अनाउंस हुआ है, जैसे मैंने बताया 2 महीना पहले, इससे नए प्रोजेक्ट और शुरू होंगे, तो 2030 तक वो प्रोजेक्ट भी अपने प्रोडक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे होते हैं जिसे ओसैट और असेंबली कहा जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट को 4 से 5 साल लगते हैं जिसे फैब्स और फाउंड्री कहा जाता है। तो हमें दोनों का ये कंबाइनेशन देखना है, इसलिए कहता हूँ कि 2030 में क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हमारी जो अभी प्रोडक्शन हो रही है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऐसा हमें मैसेज मिल रहा है कंपनी से कि उनका डिमांड पूरा फुलफिल्ड है, मतलब जो कैपेसिटी है फुल्ली बुक्ड है, मुझे बस पूरा रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड का, कुछ इंडियन कंपनीज का। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक क्रेडिबिलिटी बन गया है, ये जो हम ट्रस्ट वर्दीनेस कहते हैं कि भारत में चिप बन गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी ग्लोबल मार्केट में और घरेलू मार्केट में भी उसका अच्छे से उपयोग हो रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये भी जानते हैं कि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है बड़ी फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आते हैं। तो जब हम किसी चीज में जिसका स्पेशली जेस्टेशन पीरियड लंबा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बीच में टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी स्टार्टअप्स, हमारा इकोसिस्टम गियर्ड अप है कि वो मोबिलिटी, वो एक्सपेंशन और नई टेक्नोलॉजी को अंदर लाने के लिए हम लोग इक्विप्ड हैं दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है सेमीकंडक्टर्स में?
2: जी बिल्कुल, ये तो सेमीकंडक्टर की एक टेक्नोलॉजी है, बट अगर आप ओवरऑल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या हमारे एमएसएमईज हैं, क्या वो इसके लिए गियर्ड अप हैं या नहीं है, देश में क्या वो एक इनोवेशन का इकोसिस्टम है या नहीं है, ये आपने सवाल पूछा, तो डेफिनेटली मैं इसमें कहूंगा कि जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, हमारे देश में सिर्फ 400 रजिस्टर्ड जो है स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हमें बात कर रहे हैं 2,25,000 से ज्यादा हमारे देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न ऑलरेडी देश में हो चुके हैं। कहने का मतलब है आज हर जो युवा यहाँ पे है, क्योंकि हमारी कंट्री में 65% लोग यंग हैं जो कि 35 ईयर्स के कम की एज के हैं, तो मेन इसमें मकसद ये है कि युवाओं को हम सिर्फ जॉब सीकर ना बनाएं बल्कि जॉब क्रिएटर की इसमें भूमिका हमारे युवा निभाएं। तो हमारी एम्बिशन अभी ये है कि सबसे पहले डिजाइन इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, लीड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि डिजाइन भी यहाँ पे हो और इनोवेशन भी इंडिया में हो और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में हो, बट इंडिया जो है वर्ल्ड में लीड करे टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की जहां तक एडॉप्शन की बात है आज हमारे देश में, क्योंकि हमारे बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही एस्पायरिंग हमारी सोसाइटी है, आज देख लीजिए 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हमारे देश में यूज हो रहे हैं और हमारे देश का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है, और हमने जो यूपीआई का है पूरा एग्जाम्पल यहाँ देश में है, और किस तरीके से कोविड के टाइम में हमने नई टेक्नोलॉजी अपना के और देश में जिस तरीके से हमने कोविड को एक अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इतना आबादी वाला देश था, वहां पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं समझता हूं जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम बना है, एक इनोवेशन का इकोसिस्टम बना है, जो कि आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जो हमारी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगा, जब हम विकसित भारत 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल जो पिलर होगा हमारे ग्रोथ का वो है टेक्नोलॉजी, और इंडिया सारी टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है और जिस तरीके से हमारे युवा जो है आज, चाहे आप स्टार्टअप की बात करें, चाहे स्पेस में है, जस्ट 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंडिया भी है कि जिन्होंने स्पेस में जो है प्राइवेट सेक्टर और स्पेशली युवा जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो ओवरऑल एक देश में एक इकोसिस्टम बन रहा है उसमें सारे हमारे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे जो लोग हैं टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, और जो जितने आज अगर स्टार्टअप भी हमारे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, बट हमें ये करना है कि जो टेक्नोलॉजी हम देश में एक ला रहे हैं नई नई, उससे जो है किस तरीके से हम एक आम आदमी की जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन जब तक ना हो तब तक उसका जो कि हर आम आदमी चाहे गांव में हो शहर में हो वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो और उसको यूज कर सके, और यही एक हमारे देश में इसमें खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, खास तौर पे आपके एग्जाम्पल है यूपीआई, और अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का जो हमारे देश में जितना सस्ता इंटरनेट है दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पे भी इतना जो सस्ता इंटरनेट नहीं है, तो जो इस टाइम ओवरऑल हमने जो ये नया एक कदम लिया है सेमीकंडक्टर

0: उनका डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरा, जो हमारे अटल इनोवेशन सेंटर्स हैं, उसका डेफिनेटली मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, IITs हैं या दूसरे ITIs हैं, कैसे हम अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू अपने युवाओं में, अपने यंगस्टर्स में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए कैसे उनको और इसमें पार्टिसिपेट करवाएं। और ये पूरे देश में चल रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हर स्कीम में ये है कि उसमें कैसे हम युवाओं को जोड़ सकें, और युवा इसमें मैक्सिमम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और फाइनली यही हमारे देश की, विकसित भारत बाय 2047 की, उसकी जो, अगर मैं कहूँगा, फाउंडेशन स्टोन है, जो आधारशिला है, वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी रहेगी।
1: अशोक, डॉक्टर मेहता ने कहा नए कदम, आपने भी कहा कि न्यू इनोवेशन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नई चीज शुरुआत होती है तो टीदिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं। आपको क्या लगता है कि फिलहाल कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस, वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे अशोक हमारे लिसनर्स के साथ?
2: भारत में जैसा मैंने पहले कहा कि चिप डिजाइन का काम तो कई सालों से हो रहा है, 2-3 दशक से हो रहा है, तो वहां पर हमारे पास मैन पावर, ट्रेंड पूल ऑफ द इंजीनियरिंग अवेलेबल है। करीबन वर्ल्ड का 20% चिप डिजाइन इंडियन इंजीनियर्स करते हैं। वो मुद्दा तो क्लियर हो गया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भारत के पास कभी ये इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट ऑपरेशनल था, जो कि मोहाली चंडीगढ़ के पास में SCL नाम से बोला जाता है, सेमीकंडक्टर लैब लिमिटेड, उतना ही था, एक छोटा सा ग्लोबल कंपैरिजन में। तो भारत का जब ये एक जर्नी तय हो गया, हमारा जो रोड मैप बन गया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना जरूरी है अपने आत्मनिर्भरता के लिए, और ऑल्सो ग्लोबल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमारे पास उसके ट्रेंड मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम इन चीजों को भारत में कैसे लाए। और इसीलिए ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना हुई थी, उसके तहत कुछ इंसेंटिव दिया गया है ग्लोबल कंपनीज को कि वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करें। और उसके साथ में मतलब ये हो गया कि हमें जो मेन चैलेंज है, ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या ग्लोबल कंपनीज खुद अपना यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग सेट करें, ये एक बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी दृष्टिकोण के तहत काम चल रहा है, हमें उसमें पार्शियल सक्सेस है। मतलब जैसा मैंने बताया कि कुछ 12 प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए थे, उसमें एक कैटेगरी होती है असेंबली यानी टेस्ट, OSAT बोला जाता है, उसमें हमें सक्सेस हो गया है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट भी कम होता है और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी थोड़ा इजी है मैनेज करना। लेकिन जो दूसरा क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा है, जिसे फैब कहा जाता है, फाउंड्री, वेफर बनाने की स्थिति, उसके लिए अभी भी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट मिले हैं। एक टाटा का है, बड़ा इन्वेस्टमेंट, $8 से $9 बिलियन का, जिन्होंने एक कोलैबोरेटर लिया है ताइवान से, और दूसरा है सिक्स सेम नाम की कंपनी जो उड़ीसा में आ रही है, उन्होंने भी एक कोलैबोरेटर लिया। तो सिर्फ 2 प्लांट है। तो हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज रहेगी, हम कैसे ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें, या उनसे हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट वेंचर बनाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से यही है। दूसरी बात, अब इंडिया के पास में, जब मैंने कहा कि हमारे पास चिप डिजाइन के क्षमता है, लेकिन हमारी जो क्षमता है डिजाइन की, वो थोड़ी कैप्टिव डिजाइन सेंटर के तहत बनी हुई है। तो चिप डिजाइन से जो एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की है, उसके हिसाब से चिप बना के उसका प्रोडक्ट बनाए और फिर मार्केट में लाए, उसके लिए भी हमें चैलेंज है। अभी जैसे अभी रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट्स पर भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए हेल्प की थी, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर है, उसकी चिप बनाने के लिए गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, और जो CCTV है, जो कैमरा लग रहा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे इस टाइप के कई उदाहरण हैं जहां पर सरकार की मदद से, इंसेंटिव से, ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन दो क्लियर कट, टू समराइज, मैं कहूंगा 2 मुद्दे हैं जहां पर हमें मेन चुनौतियां है। एक, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी लाए या ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आने के लिए प्रेरित करें। थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है उसमें, लेकिन काफी काम करना बाकी है। और दूसरा, जो हमारी चिप डिजाइन की क्षमता है, उसको हम चेंज करें टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्रिएशन, उसका भी अभी काम चल रहा है। ये दोनों चुनौतियों का हमें आगे सामना करना पड़ेगा और इसके रास्ते निकाल कर आगे बढ़ना होगा।
1: आइए सुनते हैं स्टार्टअप इंडिया पर ये रिपोर्ट।
3: स्टार्टअप इंडिया पहल को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत युवाओं, उद्यमियों और नए विचारों वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता, आसान नियमों और बेहतर नेटवर्किंग के अवसर देने की कोशिश की जाती है। स्टार्टअप का मतलब केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति अगर किसी नए विचार पर काम कर रहा है, चाहे वह खेती के लिए तकनीक हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, ई कॉमर्स हो या क्लीन एनर्जी,

0: तो वह भी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य ऐसे विचारों को बिजनेस में बदलने में मदद करना है। इस पहल का एक अहम हिस्सा है DPIIT रिकॉग्निशन, यानी विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता। यह मान्यता पाने के बाद स्टार्टअप कई फायदे पा सकते हैं, जैसे कर संबंधी छूट, आसान अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की तेज प्रक्रिया और कई सरकारी योजनाओं तक पहुंच। पात्र स्टार्टअप्स को अपनी शुरुआती 10 वर्षों में से लगातार 3 वित्त वर्षों के लिए आयकर छूट का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। स्टार्टअप इंडिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू इनक्यूबेटर है। इनक्यूबेटर नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और फंडिंग से जुड़ी जानकारी देता है। हालांकि स्टार्टअप की यात्रा आसान नहीं होती। शुरुआती फंडिंग, सही मार्केट, टीम बनाना, नियमों को समझना और लगातार बदलती तकनीक, ये सब चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल नए उद्यमियों को एक सहारा देने की कोशिश करती है। स्टार्टअप इंडिया केवल नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की युवा प्रतिभा को रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: तो आप सही बोल रहे हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मेहता कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने किया है, ईज ऑफ वर्किंग, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कम कर रही है, काफी बहुत सारा एफर्ट किया गया है, पर आपको भी इंडस्ट्री से फीडबैक मिलती होगी रेगुलर बेसिस पे, आपके फोरम्स होते हैं। कुछ मेन चीजें जो डिमांड है, जो आस्क है इंडस्ट्री की, जो आप सरकार के सामने रख सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, हमारा टाइम टू टाइम इसमें डिस्कशन मिनिस्ट्रीज के साथ होता रहता है और सरकार इस बारे में बहुत तत्पर है कि कैसे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल डेफिनेटली ये रहता है कि कैसे अच्छी पॉलिसीज बनाएं, बट एट द सेम टाइम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट्स पे होता है। जो सबसे बड़ी बात आती है जब कोई फैक्ट्री आती है, जब कोई नया कारोबार स्थापित करना चाहता है, कोई भी नया उद्यमी है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी है। और हालांकि कई स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल गुजरात ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, अभी उत्तर प्रदेश इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है, जिसमें कि लैंड जो है डिजिटली जो उसके मैप्स हैं वो सारे अवेलेबल हों, और कैसे कितनी इजी तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली जब कोई इन्वेस्टर आता है उसके लिए पूरा, ये मैं कह रहा हूँ कि आज देश में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, लेबर लॉज की बात है, अभी जो नए लेबर फोर कोड्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड है कितनी जल्दी हम उन्हें पावर कनेक्शन दे सकते हैं, कितनी जल्दी लैंड अलॉट कर सकते हैं और किस दाम में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका है लैंड की। और इसमें हमारा ये सजेशन रहा है कि हम जो है एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगाएं, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि बड़ी कंपनी तो अपना कर लेती है, बड़ी कंपनीज को इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो स्मॉल कंपनीज हैं, छोटे व्यापारी हैं, MSMEs हैं, उनको आज हमें एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमने जो गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि एक ऐसा बनाया जाए जिसमें कि कोई भी उद्यमी जाए और अपना वो, उनको क्या चाहिए, पावर कनेक्शन चाहिए और सारी जो उनको अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, या सारे अप्रूवल्स के साथ वो पावर कनेक्शन उनको मिल जाए, उनको जगह मिल जाए, जिससे कि वो अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर सकें। हालांकि उसमें एक टाइमलाइन रख दी जाए कि अगर आपको हम दे रहे हैं तो इतने टाइम में इसका प्रोडक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली वो डिपेंड करे कि कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, उसके बेसिस पे जहां जहां जैसे जैसे जिस ज्योग्राफी में जो चीज अवेलेबल है उसी टाइप की अगर कुछ इंडस्ट्रियल अगर क्लस्टर बनाए जाएं जो कि प्लग एंड प्ले सिस्टम के हों, उससे जो है स्पेशली छोटे व्यापारियों को हम इनकरेज कर सकते हैं कि कैसे वो इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मैक्सिमम हिस्सा ले सकें। और अगर आप आज हम देखें तो स्टार्टअप्स हमारे देश में बहुत आ रहे हैं, बट मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो टेक प्लेटफॉर्म्स और इस पे आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग में लाने की, और मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत ही टीडियस काम है जिसमें कि डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो करना है। तो मेरे ख्याल से इस पे एक अगर प्लग एंड प्ले सिस्टम बन जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर से बन जाए, उसमें कई ऐसे उद्यमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत देश में तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि आज भी हम कई टेक्नोलॉजीज पे, कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए हमें बाहर के देशों में ही कई देशों में डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि आज हमने करीब 40 देशों के साथ FTA कर ले हैं, बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के लिए खड़ा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें करीब $1 trillion मार्केट

0: करीब खड़ा कर दिया है, और ईयू है, यूके है, न्यूजीलैंड है, अपना जीसीसी कंट्रीज में है, ये सारे जो है हमारे एफटीए साइन हो गए हैं। बट उस एफटीए का रियल फायदा तब मिलेगा जब जो हमारे प्रोडक्ट्स हों, जो यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे जो उद्यमी, वो जो है ग्लोबली बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हों। उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो ओवरऑल, अगर आप देखें गति शक्ति मिशन की वजह से, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें भी काफी अच्छा, उसमें भी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आ चुकी है। और जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, बट वहां पे भी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम क्लियर तैयार हो गया है। तो मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इसमें बहुत अच्छा एक सुधार आया है। बट अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की तरफ प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम अगर देश में तैयार हो जाए, तो और भी जल्दी इसमें गति आ सकती है।
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है अशोक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी बात की डॉक्टर मेहता ने कि एमएसएमईज को कैसे हम प्लग एंड प्ले मॉडल में लाएं, बिकॉज उनकी आई थिंक एक वल्नरेबल ग्रुप है एमएसएमईज, और यही एक ग्रुप है जो लेबर इंटेंसिव भी होता है और जॉब्स की भी हमें ज़रूरत है इस देश में. सो आई थिंक कहीं इनको स्पेशल बेनिफिट्स तो दिए जा रहे हैं, बट ये भी कहा डॉक्टर मेहता ने कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक टीडियस काम है, एक टीडियस चीज़ है, और इसमें किसी को अंदर आने के लिए जब और लो हैंगिंग फ्रूट है, जब और आसान वाली चीज़ें हैं, जैसे टेक प्लेटफॉर्म करें तो इट्स ईजियर, उसमें ज़्यादा आसान है. तो युवा इधर से आके मैन्युफैक्चरिंग में आए, इस वल्नरेबल ग्रुप में आए, आपका क्या फीडबैक, आपको क्या मिली है इसके बारे में, और कैसे सरकार इस वल्नरेबल ग्रुप को और इनकरेज कर सकती है, स्ट्रॉन्ग कर सकती है, क्योंकि ये तो बैकबोन है. अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज लें, उनके जो डाउनलाइन वेंडर्स होते हैं वो भी एमएसएमईज ही होते हैं.
2: मैं कहूंगा कि इसमें भारतीय कंपनीज के लिए एक क्षेत्र में काफ़ी अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं और कुछ उसके मटेरियलाइज भी हो रहे हैं। विजुअली ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं ये तो हजारों करोड़ की फैक्ट्री लगती है इसमें। सही बात है, 5 बिलियन 8 बिलियन डॉलर वगैरह। लेकिन ये उद्योग सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, इसमें फैक्ट्री बनने के बाद चलाने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती है, जिसमें कुछ मशीन्स है, मटेरियल्स है, केमिकल्स है, गैसेस है, कुछ चिप डिज़ाइन का मामला है, प्रोडक्ट क्रिएशन है, उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें वाहनों की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। तो हमें ये एक मन में और माइंड में पिक्चर क्रिएट करना होगा कि ये सिर्फ हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, है लेकिन उसके साथ में बाकी लोगों को भी इसमें अवसर है। अब रही सवाल बात युवाओं की, तो मैं कहूंगा कि इसमें युवाओं के लिए और न्यू जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो शुरू हुआ था, उसे कहते हैं C2S, दैट इज चिप टू सिलिकन। इसके तहत करीबन 400 इंस्टीट्यूट को हाई कॉस्ट डिजाइन टूल्स सरकार ने उपलब्ध करा दिए, जो जिसके लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है अदरवाइज, तो वो करा दिए। उसके तहत करीबन 65,000 65,000 स्टूडेंट्स को इसमें फायदा हुआ है। वो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंसिव टूल लेके अपने अपने चिप डिजाइन करके, जिनका चिप अच्छा रहा उन्होंने कुछ सैंपल भी मैन्युफैक्चरिंग किए। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट सेमिकॉन इंडिया हुआ था 17, 18, 19 सितंबर दिल्ली में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने 20 स्टूडेंट्स के हाथों से 20 चिप का उन्होंने उद्घाटन किया। बताया कि ये 20 चिप जो है उन्होंने बनाए हैं, उनको 20 चिप समर्पित किए गए प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित किए। तो ये देखिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट के लिए उसमें काफी काम चल रहा है। दूसरी बात कि इसमें इतना बड़ा ब्रॉड इकोसिस्टम है हमारा सेमीकंडक्टर का, जिससे कि अलग अलग रुचि और योग्यता वाले लोगों के लिए अवसर है। अगर किसी की रुचि मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर में है, तो वो चिप डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हैं। किसको व्यावहारिक काम करना पसंद है, तो वो मशीन निर्माण के लिए, रख रखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता जांच मतलब टेस्टिंग के लिए अवसर तलाश कर सकते हैं। अगर किसी की रुचि विज्ञान में है, तो वो इसमें मटेरियल्स और R&D इनोवेशन उस पर भी काम कर सकते हैं। और अगर कोई आदमी उद्यमी बनना चाहता है, तो अपना उत्पाद या किसी उद्योग की समस्या का समाधान भी विकसित करते थे। तो इसमें मैं कहूँगा विद्यार्थियों को बुनियादी पढ़ाई मजबूत करनी चाहिए, पढ़ाई के और एक क्षेत्र के लिए नए नए अवसर मिल रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने करिकुलम मॉडिफाई कर दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं, जिससे कि सेमीकंडक्टर का काम उन्हें सीखने मिलेगा। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग की पायलट लाइंस का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी, जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक्सपीरियंस एक ज़रूरी होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। और मैं आपके आकाशवाणी द्वारा यही कहूँगा कि जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें। सो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट

0: कोऑपरेशन जो टॉपिक है ये हमेशा चलते रहता है, मैं कहूँगा वो हमारे साथ काम करें जिससे कि विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उद्योग में वास्तव की किस कौशल की जरूरत है, और कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जाएगी। अब वैसे तो भारत की पास बड़ी युवा आबादी है, और इस ताकत को हम अच्छी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और नए विचारों के तौर अगर विकसित जोड़ दे तो हमारे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत कार्यबल तैयार कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी।
1: डॉक्टर मेहता, आते हैं ग्लोबल लेवल पे ये समझने के लिए कि हम बना रहे हैं, हमारी अपनी डिमांड है, बट कहीं इंटरकनेक्टेडनेस की बात हुई, वी आर ऑल्सो अ रीजनल पावर। तो आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया रीजन में भारत की जो हमने हमने प्रोग्रेस बनाया है इस एरिया में, उसका पेस इज फास्ट इनफ कि हमें उसमें थोड़ी और गति दिखानी पड़ेगी?
2: देखिए, जो आज ग्लोबल साउथ की अगर आप बात करें, भारत ऑलरेडी अपनी लीडरशिप उसमें बनाने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली हमारे साथ और भी देश हैं, जो कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है, जो कि इसमें स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत आगे चाइना हमसे है। बट द सेम टाइम जो हमने स्टेप लिए हैं पिछले कई दिनों में, क्योंकि लीडरशिप में सिर्फ आपके पास कितना आपकी बड़ी इकोनॉमी है या क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही एक चीज जरूरी नहीं है। इसमें ये भी एक जरूरी होता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है, क्या आपका जुडिशियल प्रोसेस है, क्या आपका जुडिशियल सिस्टम है, और आईपीआर के किस तरीके से आपके प्रोटेक्शन है। तो इन सारी चीजों में अगर आपने देखा तो आज अगर कोई भी ऐसा देश है जब चाइना प्लस वन की बात कर रही है तो उसमें इंडिया जो है नंबर वन उनके दिमाग में रहता है। तो इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन क्रिएट जो है करी है। यही नहीं, अगर आप G20 की बात करें, हमने इतने सारे जो नए स्टेप्स लिए हैं जिसमें G20 में हमने लीड ली है, और किस तरीके से हमने कोविड के टाइम में इंडिया में सिर्फ एक वैक्सीन बनाई नहीं बल्कि अपने कई देशों को हमने वैक्सीन दी है कोविड के टाइम में। और जब भी कहीं देश में या दुनिया में कहीं पे कोई आपदा आती है, एशिया में आपने देखा होगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करता है तो इंडिया करता है। चाहे आपदा कहीं पे भी आई हो, अभी नेपाल में हमने देखा आपदा आई, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया। और जहां जहां आज कोई भी ऐसी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, पूरे लोग जो है भारत से अपेक्षा रखते हैं कि भारत उसमें हस्तक्षेप करे। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए संभव हुआ है कि पिछले जो भी 10-12 साल में भारत ने एक जो जिस तरीके से काम किए हैं, और हमारा एक एक स्टेप है क्योंकि एक लीडरशिप पोजीशन में हम आना चाहते हैं, और उसके लिए हमने एक पूरा जो करना चाहिए एज अ लीडर जो देश देखना चाहता है वो स्टेप हमेशा हमने लिए हैं। और मैं समझता हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर अगर कोई है जिसमें पूरी दुनिया विश्वास करती है, वो भारत देश है। और ये करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत सारी ऐसी हमारी डेफिनेटली हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है और ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस टाइम जबकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस चैलेंजेस चल रहे हैं, और कोविड के बाद जिस तरीके से हमने जो कोविड के मार से जो देश उभर रहे हैं उसमें भी सबसे पहले भारत उभरा, और इस टाइम भी जब पूरी दुनिया में कई सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, दो दो जंग बिल्कुल चली हुई है, तो उसमें भी भारत एक तेज गति से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस ड्यूरेशन में भी। तो ये सब चीजें और जो हमें ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से हम एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भारत पे लोग विश्वास करते हैं। भारत से लोग, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो भारत को छोड़ना चाहता है या भारत में अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले देश
1: जी
2: जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो भारत में आना चाहता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर मेहता, बहुत सुंदरता आपने कहा कि ट्रस्ट बनने में समय लगता है और बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता, यू नो, और हम ये ट्रस्ट बिल्ड
2: जी
1: कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स अशोक आपसे चाहेंगे ब्रीफली।
0: मेरा संदेश ये है कि सेमीकंडक्टर केवल चिप्स की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य की बात है। यह उद्योग, हमारे कारखाने, हमारे अर्थव्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। सरकार ने नीतियां बनाई है, उद्योग निवेश कर रहा है, और भारतीय इंजीनियर दुनिया भर में चिप डिजाइन क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, उसके साथ साथ देश में नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी
0: हमें
1: बिल्कुल,
0: इस नींव को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि हम अभी 4C पर लगे हैं,

0: आरसी कौन से, इसमें एक है क्रेडिबिलिटी, हमारी अब क्रेडिबिलिटी स्थापित हो गई है पिछले 5 साल में जो काम हुआ है, कैपेबिलिटी हमारी कैपेबिलिटी बिल्डअप हो रही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो पार्ट 2 अभी अनाउंस हुआ उसके
1: जी
0: तहत,
1: जी जी
0: पॉलिसी कंटिन्यूटी जो सरकार का चल रहा है सेंट्रल
1: जी
0: गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स,
1: जी
0: और कमिटमेंट ये सारे इंडस्ट्री का, तो ये
1: वंडरफुल
0: 4C के तहत हमारे न्यू मजबूत हो रही है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है। एज अ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और सेमी इंडिया, हम
1: एब्सोल्युटली
0: सरकार के साथ में, उद्योग के साथ में हाथ
1: जी
0: मिलाकर, कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ये देश का जो जर्नी है ये बहुत
1: जी
0: जल्दी आगे एक्सेलरेट होके सफल होगा।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चंडाक जी और डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे कार्यक्रम आने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे थे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी गौरा धवनलाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप इसे हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: சில நொடிகளில் தொடரும் செய்தி தொகுப்புகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே முகேஷ் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
2: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ले

0: में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक A.अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित यह उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में

0: श्री गोयल ने कहा कि अमरीका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड FTA
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से एलपीजी गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
4: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
3: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
5: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
3: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
6: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
0: शिमला से हमारे संवाददाता

0: बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
1: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities. Also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
3: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
2: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varunastra heavyweight torpedoes, worth over 1,500 crore rupees, was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on

0: ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम। रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: नमस्कार श्रोताओं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जिसे हिंदी में कहें न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में आप सभी अवगत होंगे और खासतौर पर जो हमारे किसान श्रोता हमें सुन रहे हैं वो तो इससे पूरी तरह से परिचित ही हैं कि जो खेतों में फसल की पैदावार होती है जब वो पूरी तरह से फसल बनकर तैयार होती है तो उसका एक मूल्य की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है जिससे किसानों की आय भी सुनिश्चित होती है। लेकिन सरकार ने बीते वर्षों में सीमित फसलों से हटाकर कई महत्वपूर्ण अन्य फसलों पर भी फोकस करते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी की गारंटी दी है और इससे देश भर में जो फसलों का विविधीकरण है या दूसरी फसलों की ओर किसानों का जो रुख है वो बढ़ा है, खासतौर पर तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर। तो आज हम कार्यक्रम में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर अन्य फसलों पर और फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है, वो कैसे हमारे देश में खेती के एक नए प्रारूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण है और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों को लेकर विभिन्न फसलों में एमएसपी की घोषणा की है उस पर भी आज हम विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: हम कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही में जो रबी फसलों को लेकर एमएसपी को लेकर घोषणा हुई है, मंजूरी हुई है, उस पर ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा जैसे दो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें जिनकी हम चर्चा करें जिस पर एमएसपी की एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने इस मंत्रिमंडल के फैसले में देखी है, एक तो सैफ्लावर जिसे कुसुम कहते हैं हम, इसमें प्रति क्विंटल 675 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसी तरह से सरसों पर भी 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो इतनी अच्छी बढ़ोतरी सैफ्लावर और सरसों जैसी फसलों को लेकर सरकार ने दी है, आप कैसे देखते हैं इस मंजूरी को और खासतौर पर जो हमारे देश में फसलों के डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण को लेकर ये किस तरह से अहम फैसला है?
2: हर साल भारत सरकार 22 फसलों की एमएसपी अनाउंस करती है
1: जी,
2: इसमें 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और जूट और कोपरा की भी एमएसपी अनाउंस होती है और उसके बाद से जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो खरीदारी करती है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं जो अनाज और मोटे अनाज है उसकी खरीदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है और इसमें राज्य की एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं और दलहन और तिलहन की खरीदारी एक हमारी स्कीम है पीएम आशा स्कीम, उसके अंतर्गत किया जाता है और इसमें खरीदारी करने वाली एजेंसी है वो नैफेड और एनसीसीएफ है और हर साल इन सारी खरीदारी से जो किसान के खाते में भुगतान होता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है और उससे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होते हैं। अभी 30 सितंबर को 6 रबी की फसलों की एमएसपी अनाउंस हुई है, मैं उसका डिटेल बता देता हूं, जिसमें गेहूं की एमएसपी अब 2610 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 25 रुपए ज्यादा है। बार्ली जौ इसकी एमएसपी अब 2286 रुपए कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 136 रुपए ज्यादा है। ग्राम चना इसकी एमएसपी अब 5958 रुपए कर दी गई है जिसमें पिछले साल की तुलना में 83 रुपए की वृद्धि की।

0: गई है। मसूर की एमएसपी अब 7,390 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 390 रुपए ज्यादा है। मस्टर्ड सरसों, इसकी एमएसपी अब 6,613 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 413 रुपए ज्यादा है। और सफ्लावर कुसुम की एमएसपी अब 7,215 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 675 रुपए ज्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो दलहन और तेलहन की एमएसपी है वो ज्यादा रखी गई है। तो इससे जो विविधीकरण, जैसा आपने जिक्र किया, डाइवर्सिफिकेशन में को प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिलेगी।
1: तो आपने जैसा कि विभिन्न फसलों के बारे में बताया कि किन किन फसलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की है, दालों का ही अगर हम जिक्र करें तो सरकार का फोकस है कि जो दालों का उत्पादन है वो देश में बढ़े और जो हम आयात पर हमारी निर्भरता है वो हमारी कम हो। मसूर की दाल का आपने जिक्र किया, 390 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस बार। और अगर हम देखें तो मसूर की दाल पर अब एमएसपी 92% तक एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है, यानी जो हमारा 50% तक से ज्यादा का लक्ष्य था उसे लगभग 42% ये ज्यादा है। कैसे आप देखते हैं कि अब दालों की अपनी आत्मनिर्भरता को हम और मजबूत कर रहे हैं और किसान भी इसमें रुझान दिखा रहे हैं उत्पादन में, कितना ये जरूरी है?
0: देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पल्सेज हैं, दाल हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हमारे देश में ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: सबसे ज्यादा खपत भी हमारे देश में ही होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा साधन दाल है और खासतौर पर एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है।
0: और सबसे ज्यादा इम्पोर्ट भी हम ही लोग करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है और इसके लिए आप देख सकते हैं, एक तो एमएसपी का अधिक रखना दालों का बहुत बड़ा इसमें योगदान मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक दलहन की उत्पादन करें। और इसके अलावा भारत सरकार भी एक दलहन मिशन चला रही है, जिसके अंतर्गत जो तीन तूर, उड़द और मसूर है, इसकी खरीदारी अब 100% भारत सरकार करेगी, नेफेड करेगी। तो इन सारे बढ़ी हुई एमएसपी और जो दलहन मिशन है, इससे पल्सेज को प्रमोट करने में काफी मदद मिलती है और इससे हमें उम्मीद है कि किसान भाई भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा देश भी इसमें आत्मनिर्भर होगा और किसान को भी अपनी फसल का उचित लाभ मिलेगा।
1: क्योंकि गेहूं जो ऐसी फसल है भारत की, हमारी कहें तो भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है, और आप किसानों को गेहूं की जो लागत है उसका रिटर्न अगर हम देखें तो 106% के आसपास अब मिल रहा है
0: जी।
1: तो गेहूं किस तरह से भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है और सरकार के जो प्रोत्साहन लगातार हैं किसानों को लेकर, एक पारदर्शिता है, उससे देश की खाद्य सुरक्षा और कैसे मजबूत हो रही है?
0: जैसा आपने बताया कि जो गेहूं और चावल है, ये हमारा मुख्य भोजन का में हम लोग खाते हैं, और इस साल जो मार्जिन रखा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, वो 106% का, जैसा अभी आपने बताया, और पिछले साल भी आप देखें तो 109% का इसमें मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रखा गया था। तो लगातार सरकार वीट को भी प्राथमिकता दे रही है और उसको अधिक से अधिक इसमें किसान भाई को हमारा लाभ मिले, उसका भी प्रयास रहता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। इस प्रोत्साहन का असर ये है कि पिछले साल 2025-26 में जो हमारी खरीदारी हुई है 350 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हुई है
1: जी,
0: और उसके पिछले साल 2024-25 में लगभग 300 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी। और इसकी वजह से जो हमें फूड मिनिस्ट्री ने बताया है कि 1 अगस्त 2026 तक जो हमारा गेहूं का स्टॉक था वो 505 लाख मैट्रिक टन था, जो कि अब तक हाईएस्ट है।
1: बिल्कुल।
0: तो निश्चित तौर पे जो एमएसपी अनाउंस हुई है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उससे हमारी एमएसपी से किसान भाई उसमें अधिक से अधिक किस फसल को ग्रो कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे देश की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी गेहूं की बड़ी मात्रा है, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: अब हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे चने और जौ की फसलों पर बढ़ी एमएसपी को लेकर, क्योंकि सरकार का भी फोकस है जो हमारी मिलेट्स हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, उसमें जौ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जौ की अगर हम बात करें तो 136 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और चने में 83 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, जो कि हमारे खाने पीने में बड़े महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इनकी मांग को और किसान भी इन फसलों को लेकर, उपजाने को लेकर प्रोत्साहित हो, कितना जरूरी है इन फसलों पर एमएसपी का बढ़ना?
0: देखिए, मतलब जैसा आपने बताया भी और सरकार दलहन को प्रोत्साहित तो कर ही रही है, उसके अलावा जो फसलें जिसका उत्पादन कम होता है उसको भी एमएसपी के माध्यम से उसको बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। जैसे दलहन के लिए अभी मैंने बताया कि दलहन मिशन चल रहा है और उसकी एमएसपी भी अधिक रखी गई है बाकी फसलों की तुलना में। इसकी वजह से जैसे आपने चने का जिक्र किया, तो इससे प्रोडक्शन पर भी असर

0: मैं जस्ट आपको आंकड़े बताऊं,
1: जी जी
0: 2024-25 में जो चने का प्रोडक्शन 111 लाख मैट्रिक टन हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर 125 लाख मैट्रिक टन हो गया है। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, एमएसपी अनाउंस होती है जो, और प्रोत्साहन के जो हमारे स्कीम्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे पल्सिस मिशन है, इससे दलहन की प्रोडक्शन बढ़ाने में निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर उसका असर पड़ रहा है। जैसे आपने बार्ली का जिक्र किया, तो बार्ली में हमारा जितना रिक्वायरमेंट है देश में, उतना उत्पादन नहीं होता है
1: जी।
0: हमारी इम्पोर्ट पे निर्भरता है, और इस निर्भरता को कम करने का एकमात्र माध्यम यह है कि आप अधिक से अधिक उस फसल को प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में बार्ली का एमएसपी 136 रुपये बढ़ाया गया है, जो 58% मार्जिन के साथ फिक्स किया गया है।
1: जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो हमें 2018-19 का केंद्रीय बजट की सरकार की वो प्रतिबद्धता याद आती है, जब सरकार ने ये तय किया था कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो फसलों का 1.5 गुना स्वीकृत मंजूर होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो सरकार की जो ये प्रतिबद्धता थी और उसको लगातार सरकार ने पूरा भी किया है, आप कैसे देखते हैं सरकार की इस कमिटमेंट को? और जिस तरह से हमेशा ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में हमने देखा है कि समय समय पर एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की जाती रही है समय की मांग के हिसाब से, और साथ में जो किसानों की आय है उसको लेकर कैसे इससे स्टेबिलिटी आई है, स्थायित्व आया है कि लगातार किसानों को उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है उसको न सिर्फ बरकरार रखा गया है बल्कि बढ़ाया भी गया है।
0: जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था 2018-19 में, 1 फरवरी 2018 को अनाउंसमेंट हुआ था कि एमएसपी अब जो फिक्स होगी वो कम से कम लागत मूल्य पर 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स होगी। उसके बाद से जितनी एमएसपी फिक्स हुई है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की गई है। मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी का काफी जिक्र होता है, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि भाई जो एमएसपी फिक्स होती है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ होनी चाहिए। तो उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, और इससे आप देख सकते हैं कि लगातार उसके बाद से एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है और प्रोक्योरमेंट खरीदारी भी बढ़ी है, और जो एमएसपी का पैसा किसान के खाते में जाता है उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इससे किसान की इनकम को बढ़ाने में काफी मदद मिली है।
1: बिल्कुल। और जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये फैसले आए हैं रबी फसलों को लेकर, तो जैसे किसान अपनी हमेशा योजना तैयार करते हैं कि कौन सी फसल की बुआई करनी है, तो अब रबी फसलों को लेकर ये जो पूरा आंकड़ा हमारे सामने आया है कि किन फसलों पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसानों को कितनी सहायता होती है ऐसे निर्णयों से कि अब रबी फसलों की बुआई से पहले वो अपनी योजना बना सकें?
0: भारत सरकार हर साल 4 बार एमएसपी अनाउंस करती है, एक खरीफ की, दूसरी रबी की, उसके बाद कोपरा और जूट की एमएसपी अनाउंस होती है। जो एमएसपी अनाउंस होती है उस सीजन से पहले की जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि खरीफ की एमएसपी इस साल मई में अनाउंस हो गई थी, खरीफ सीजन से पहले। रबी की एमएसपी 30 सितंबर को अनाउंस हो गई है। हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर से रबी स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जो सरकार अनाउंस करती है वो सीजन स्टार्ट होने से पहले करती है। इससे क्या होता है कि किसान भाई हमारे अपने फसल के बारे में सही फैसला ले पाते हैं कि किस फसल को हम ज्यादा प्राथमिकता दें, किसी को कम दें, किसको प्राथमिकता देने से उनको अधिक लाभ मिलेगा। इससे किसान को अपना डिसीजन लेने में काफी मदद मिलती है।
1: अब जैसे हम एमएसपी की ही बात करें तो जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो खाद्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेकर लगातार उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है कभी कभार महंगाई की वजह से या दूसरी कई वजहों से, चाहे वो आटा हो, दाल हो, लेकिन ये कितना जरूरी है कि किसानों को पहले ही उसकी गारंटी मिल जाए उसकी फसल की? जैसे गेहूं को लेकर ही हम अगर उदाहरण लें तो गेहूं की 25 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसान किस तरह से आश्वस्त रहता है अपनी फसल के उत्पादन को लेकर एमएसपी की वजह से कि उसको उसके फसल का मूल्य पहले ही मिल रहा है? तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सकें।
0: जैसा कि मैंने बताया कि एमएसपी सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस हो जाता है, तो उसमें किसान अपनी फसल के बारे में उचित फैसला पहले ही कर लेते हैं। जहां तक गेहूं का आपने जिक्र किया है, तो गेहूं का प्रोडक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा है और इससे इसमें हमारी खरीदारी भी काफी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो किसान को अपनी फसल का, खासकर गेहूं का, उचित मूल्य भी इनको मिल रहा है, और फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश की इंश्योर हो रही है। और एक और चीज आपने पूछा कि इससे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी अनाउंस होती है मार्केट में एक बेंचमार्क प्राइस फिक्स हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: उससे क्या होता है कि आप देखेंगे इन सारी जो एमएसपी की फसलें हैं उनका मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास ही रहता है। अभी हम लोग

0: ने गेहूं और मैं पैडी की बात करूं, उसमें धान की बात करूं, इसका पिछले 10 साल का हम लोगों ने डेटा को एनालाइज किया था और हम लोगों ने देखा कि जो MSP है उसी के आसपास ही उसका मार्केट प्राइस भी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो इससे क्या होता है, जो MSP अनाउंस होती है और खास करके गेहूं और धान की, इसमें मार्केट प्राइस भी स्टेबलाइज होता है।
1: अब सरकार का, जैसे कि आपने भी बताया कि ध्यान फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर है, गेहूं चावल के अलावा तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर MSP पर सरकार का ध्यान है और उनके प्रोडक्शन और उनके प्रोत्साहन पर सरकार फोकस कर रही है। तो हमारे देश में जो एक क्रॉप साइकिल है, या हिंदी में कहें फसल चक्र है,
0: जी
1: या जो हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता है, तो उसकी बेहतरी के लिए कितना जरूरी है कि जो दूसरी फसलें हैं उनकी तरफ किसान रुख करें और एक वैकल्पिक फसलों के तौर पर अपने खेतों में उनका उनको उपजाएं, तो कितना जरूरी है तिलहन दलहन जैसी फसलों के उत्पादन को लेकर ये प्रोत्साहन?
0: निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है कि आप अपने खेत में एक ही फसल को आप उसको प्रोड्यूस करेंगे उगाएंगे तो उसका असर उसकी जमीन की उर्वरता पे भी पड़ता है, वहां पर फर्टिलिटी भी काफी उसकी डिस्टर्ब होती है। तो एक उसमें चक्र बना रहना चाहिए जैसे कि आपने जिक्र किया, और ये चक्र हमारे देश में नेचुरली बन रहा है। आप देख लें कि गेहूं और धान के अलावा जो MSP बढ़ रही है हमारी दलहन और तिलहन की, इससे किसान भाई को प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो दलहन तिलहन की खेती भी वो ज्यादा से ज्यादा करें और वो कर भी रहे हैं। और इन दो फसलों दलहन और तिलहन की हमारी इम्पोर्ट पर निर्भरता भी है, इससे क्या होता है कि जो अभी आपने जिक्र किया कि उसकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो जब अलग अलग फसल हमारे किसान भाई ग्रो करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बैलेंस बना रहेगा। तो बार बार अपना एक जिक्र होता है कि भाई उसका ऐसा कुछ ना हो कि ऐसी फसल ही आप ग्रो करते जाएं कि उसकी फर्टिलिटी ही बिल्कुल खराब हो जाए, तो जब ये चक्र बना रहेगा तो फर्टिलिटी भी उसकी बैलेंस रहेगी।
1: अगर हम जो सरकारी खरीद की बात करें, गेहूं की फसल को खासतौर पर अगर हम लें, तो हम हमारे पास बड़े बेहतरीन आंकड़े हैं। जैसे 2004 से 14 के बीच में अगर गेहूं की सरकारी खरीद को हम देखें, तो ये जो लगभग पहले इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% से ज्यादा है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो सरकारी खरीद बढ़ती है जब किसी फसल की, तो उसमें सरकार का जो प्रोत्साहन दिया जाता है खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उसकी बढ़ोतरी का, वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है?
0: देखिए अभी आपने जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में खरीदारी में क्या असर पड़ा, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने
1: बिल्कुल
0: रखना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में गेहूं की खरीदारी 22,54,00,000 मैट्रिक टन हुई थी, जो 2014 से 26 के बीच में बढ़कर के 37,15,00,000 मैट्रिक टन हो गया है। दलहन की बात करें तो 4 से 14 के बीच में 6,29,000 मैट्रिक टन था, जो बढ़ करके 2,20,00,000 मैट्रिक टन हो गया है। 35 गुने की वृद्धि हुई है। इससे आप साफ देख सकते हैं कि जो खरीदारी है हमारी दलहन की पिछले 10 सालों में काफी बढ़ी है।
1: बिल्कुल।
0: और तिलहन की बात करें तो 2004 से 14 के बीच में 47,75,000 मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी, और 14 से 26 के बीच में 1,58,00,000 मैट्रिक टन की हुई है, 3.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो तिलहन का में भी खरीदारी हमारी काफी हुई है। तो इन दोनों फसलों को, दलहन और तिलहन को, हमारी MSP के माध्यम से काफी बढ़ावा मिल रहा है और खरीदारी भी हो रही है।
1: बिल्कुल। तो अगर किसानों के फसलों के उपजाने के को लेकर उनके कॉन्फिडेंस को देखें, तो वो कितना बढ़ा है इससे? क्योंकि आपने जैसा कि आंकड़े भी शेयर किए, और जब आंकड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को उसका सीधा लाभ भी उनके आर्थिक मोर्चे पर भी होता ही है। तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब किसानों का इन अलग अलग तरह की फसलों को उपजाने में?
0: देखिए इसमें कुछ आंकड़े जो अभी आपके पास हमने रखे दलहन और तिलहन की, तो काफी खरीदारी, इससे साफ साफ दिख रहा है कि इन फसलों की तरफ हमारे किसान भाई का झुकाव भी हो रहा है और इसकी सरकार खरीदारी भी कर रही है। जहां तक विश्वास की बात करें तो मेरा अपना मानना है कि MSP अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा किसान भी करते हैं, और सरकार की भी प्राथमिकता रहती है कि वो सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दें, जिससे किसान को हमारी MSP के बारे में जानकारी रहे और अपने फसलों के बारे में सही वो डिसीजन ले सकें। निश्चित तौर पे किसान का भरोसा तो MSP पर है और प्रिक्योरमेंट भी काफी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है।
1: तो अगर हम किसानों के आर्थिक लाभ की बात कर ही रहे हैं, तो गेहूं किसानों की अगर मैं बात करूं, आपने भी एक आंकड़ा शेयर किया था कि कैसे 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक इजाफा हुआ है किसानों गेहूं किसानों की जो MSP में बढ़ोतरी हुई है, और उसका आर्थिक लाभ जो किसानों को मिला है। तो आंकड़ा यह है कि 256,00,000 करोड़ रुपए से लेकर ये बढ़कर 731 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है
0: जी।
1: तो इतनी बड़ी मात्रा में, यानी हम कहें तो दोगुने से भी ज्यादा का एक आर्थिक लाभ

0: किसानों को सीधा मिला है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा आंकड़ा है?
1: जो दो आंकड़े आपने रखे हैं, इनफैक्ट पहला आंकड़ा आपने 2004 से 2014 के बीच का था और दूसरा आंकड़ा 2014 से 2026 के बीच का था, तो इसमें जो वृद्धि हुई है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो तीन गुने की वृद्धि हुई है। तो तीन गुना लाभ हमारे किसान को मिला है और ये उनके अकाउंट में गया है, तो उनके इनकम को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। इसी संदर्भ में मैं आपको दो और आंकड़े बताना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में दलहन खरीदारी में 1900 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाते में हुआ था और वहीं 14 से 26 के बीच में देखें तो 1,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और ये 65 गुने ज्यादा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दलहन की जो खरीदारी हुई वो भी ज्यादा हुई है और क्योंकि MSP लगातार बढ़ रही है इसलिए उसका लाभ भी हमारे किसान भाई को अच्छा मिल रहा है। इसी संदर्भ में मैं तिलहन का जिक्र करूं,
0: बिल्कुल,
1: तो 2004 से 14 के बीच में 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान भाई को हुआ था और वहीं 14 से 26 के बीच में 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो 9.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो ये सारे जो भुगतान हो रहे हैं इससे किसान को लाभ मिल रहा है और उससे किसान की इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है।
0: बिल्कुल, तो यानी कुल मिलाकर गेहूं, चावल, ये गेहूं के अलावा जो 6 बड़ी रबी फसलें हैं इनमें भी आंकड़े को हम देखें तो 265 लाख से बढ़कर 831 लाख का ये हमारे पास आंकड़ा है। ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं ये किस तरह से आप इन्हें देखते हैं और कैसे जो एक पूरा तंत्र है, कृषि तंत्र है, उसमें जो खासतौर पर ये बात सरकार की ओर से कही जाती रही है कि किसानों को जो आर्थिक आय है या उनका जो इनकम है उसमें किसानों को प्रोत्साहन मिले और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो, तो किस तरह से ये पूरा होता हुआ दिख रहा है और ये लगातार प्रक्रिया जारी है?
1: जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके दो बिंदु हैं जिसके जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 2018-19 में जब अनाउंसमेंट हुआ था बजट में कि MSP कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की जाएगी, उसके बाद क्या हुआ है कि MSP कभी भी 50% कब पे तो फिक्स हुई नहीं है। इससे क्या होता है, MSP में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले क्या था कि कुछ फसलों की, 2018-19 से पहले की बात करें तो कुछ फसलों की MSP जो फिक्स होती थी वो लागत मूल्य पर 50% नहीं भी मिलता था। MSP में एक तो लगातार वृद्धि हो रही है और जो खरीदारी हो रही है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये सारे और जो अमाउंट पैसा जा रहा है अकाउंट हमारे किसान के खाते में जा रहा है, पहले अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: अभी जो MSP का पैसा है वो किसान के खाते में जा रहा है, वो आधार से लिंक किया हुआ है,
0: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के,
1: हाँ, DBT के थ्रू जा रहा है, तो इसमें अब बिल्कुल किसान को डायरेक्टली उसका फायदा मिल रहा है। तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
0: एक प्रश्न हम अपने श्रोताओं की समझ के लिए, जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसका तय करने का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या इसका आधार यही है कि जैसे किसानों की लगातार बढ़ती हुई बीज की, खाद की, मशीनरी की या जो मजदूरी या श्रम की लागत है वो जैसे जैसे बढ़ती है तो किसानों को उसी तरह से उस आधार पर उसका लाभ दिया जाता है, तो कैसे तय होता है MSP?
1: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये अभी हम लोगों ने काफी जिक्र किया कि MSP लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ फिक्स की जाती है, तो जो लागत मूल्य है उसमें जो उसके कंपोनेंट है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो किसान उस फसल को उगाने में जो भी खर्च करता है वो सारे खर्च इसमें जोड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो लेबर हायर किया किसान ने, जितना खर्च किया उस फसल को उगाने में उसको काउंट किया जाता है। यदि किसान ने अपना वो लेबर अपने घर से यूज किया और घर के लोगों ने श्रम दिया हुआ है उसका भी इम्प्यूटेड वैल्यू जो अपना लेबर कॉस्ट है वो भी ऐड किया जाता है। यदि मशीनरी किसान ने हायर किया है उसका खर्चा भी ऐड होता है। यदि मशीनरी खुद की है तो उसका खर्चा भी उसमें ऐड होता है। और सीड्स पे जो खर्च हो रहा है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में जो खर्च हो रहा है, फर्टिलाइजर पे खर्च हो रहा है, ये सारे खर्चे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़े जाते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई किसान जमीन लीज पे लिया हुआ है,
0: जी,
1: तो उसका खर्चा बहुत आता है।
0: बिल्कुल,
1: तो यदि कोई किसान लीज पर लेकर खेती कर रहा है तो उसमें जो लीज का कॉस्ट होता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है। और इरिगेशन है, बाकी जो कंपोनेंट मैंने बताया वो तो सारे खर्चे जोड़े ही जाते हैं इसमें।
0: और जैसे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी जमीन है तो उसमें से तो अगर ज्यादा फसल की पैदावार होती है तो उसका एक एवरेज कॉस्ट निकल जाता है, लेकिन जो खासतौर पर छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको अगर MSP मिलता है तो उनके लिए कितनी बड़ी ये गारंटी होती है, कैसे उनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन होता है?

0: मैं थोड़ी प्रक्रिया और
1: बिल्कुल
0: आपको बता
1: बिल्कुल,
0: देता हूँ
1: बिल्कुल
0: कि जो हम लोग इसका आंकड़ा इकट्ठा होता है, इसमें हम लोग गांव में जो प्लॉट्स होते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी में प्लॉट्स डिवाइडेड होते हैं जिससे कि डेटा इकट्ठा होता है। पहला कैटेगरी है कि एक हेक्टेयर से कम वाले प्लॉट कौन कौन से हैं, एक से दो हेक्टेयर वाले प्लॉट कौन कौन से हैं और दो हेक्टेयर से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं। तो जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो तीनों कैटेगरी से होते हैं। तो इसमें जो एक हेक्टेयर से कम वाले जो कैटेगरी है इसमें हमारे छोटे किसान में जो खर्च हो रहे हैं वो सारे उसमें काउंट हो जाते हैं। और जो एमएसपी है उसका लाभ हर किसान लेता ही है, जैसा कि आपको हम सबको मालूम है।
1: बिल्कुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब खेती का तरीका है वो एक तकनीकी तौर पर अब अलग होता जा रहा है, उन्नत और स्मार्ट खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर हमें खेती में बहुत सारे उपकरणों की भी जरूरत होती है, तो किसान अपनी लागत को पूरा कर सकें, उपकरणों के खर्च को पूरा कर सकें, ऐसे में लगातार जो उनको प्रोत्साहन है वो एमएसपी के जरिए बढ़ोतरी के रूप में दिया जाता रहा है, वो भी क्या इनमें जोड़ा जाता है उनके खर्च को भी?
0: जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसान जो भी खर्च करते हैं वो सारा कॉस्ट उसमें जोड़ा जाता है। अभी आपने मशीनरी का जिक्र किया, मान ली कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आप उसको हायर करते हैं मार्केट से,
1: बिल्कुल,
0: तो जो आपका हायरिंग कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। मान ली आपके खुद का मशीनरी है उसको आप यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी उसमें ऐड किया जाता है। तो जो भी मशीनरी हमारा किसान यूज करते हैं उसका खर्च इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडेड रहता है।
1: तो अब कार्यक्रम में हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आखिर में हम आपसे यही समझना चाहेंगे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए, जैसे ये फैसला रहा इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का और समय समय पर केंद्रीय कैबिनेट के फसलों के एमएसपी को लेकर फैसले भी आते रहते हैं, कैसे हमारे देश का जो बफर स्टॉक है वो बिल्कुल स्थिर रहे, बढ़ोतरी होती रहे उसमें, और साथ में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती रहे, किसानों की आय भी लगातार बढ़ती रहे, इन तीनों कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से एमएसपी की का ये प्रोत्साहन कितना जरूरी है और सरकार इस ओर कितना ध्यान दे रही है?
0: देखिए, इसमें जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की बात है, इसमें गेहूं और धान में तो हमें कोई इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
1: उसमें तो आत्मनिर्भर हैं हम पूरी तरह से।
0: और जिसमें हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है दलहन और तिलहन में, उसमें भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एमएसपी में भी लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें जो भुगतान हुआ है वो भी काफी ज्यादा हुआ है, और हमारे पल्सेज मिशन भी चल रहे हैं और तिलहन मिशन भी चल रहे हैं, इनके माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इससे हम लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में हमारे किसान भाई इन सारी फसलों को प्राथमिकता देंगे, इसको अधिक से अधिक इसका उत्पादन करेंगे और बढ़ी हुई एमएसपी का उनका लाभ मिलेगा, जिससे उनका इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी और देश को भी इन फसलों पर आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में जुड़े और केंद्रीय कैबिनेट का जो हाल ही में रबी की फसलों को लेकर एमएसपी की जो मंजूरी है और साथ में किस तरह से लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोत्साहन और बढ़ोतरी के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर दिया जाता रहा है और उसमें लगातार और बढ़ोतरी होती जा रही है, इस पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस चर्चा के माध्यम से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पन बिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायु सेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अहर्ता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप

द्वीप मध्य प्रदेश मणिपुर पुदुचेरी पंजाब राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। जापान के आईची नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में भारत 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Games as memorable for India, highlighting the outstanding performances of Indian athletes across several sporting disciplines. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्वीकरण को अपरिवर्तनीय बताते हुए मजबूती और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया। इलिनॉय में हिंदू मंदिर पर हमले की नाकाम कोशिश के बाद भारत ने अमेरिका से भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से 34 बच्चों और एक शिक्षक की मौत और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद मोरे ने लास वेगास में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन इससे निपटने के लिए अधिक लचीली और मजबूत व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक ऐसी पहल बताया जो क्षेत्रीय संपर्क को लेकर सोच को पहले से ही प्रभावित कर रही है। अबूधाबी में रायसीना मिडिल ईस्ट कार्यक्रम में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रतिस्पर्धा तेज हुई है, परिवहन और संपर्क के नए अवरोध सामने आए हैं और अपने लाभ का इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कार्यक्रम से अलग डॉ जयशंकर ने युवा भारतीय प्रौद्योगिकी उद्यमियों और स्टार्टअप संस्थापकों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बातचीत को रोचक बताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी बड़े लक्ष्य तय करती है और साहस के साथ आगे बढ़ती है। डॉ जयशंकर 14 से 16 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। भारत ने अमेरिका के इलिनॉय में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर सामूहिक गोलीबारी की कथित खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू विरोधी तथा नस्लवादी प्रकृति के साथ भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ हिंसा चिंताजनक है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने संदिग्ध की गिरफ्तारी सहित अमरीकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि यह घटना अमेरिका में नस्लीय शत्रुता और भारत विरोधी नफरत को लेकर बढ़ती चिंताओं को और गंभीर बनाती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने सतर्कता बढ़ाने, नफरत से प्रेरित हिंसा के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने और भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी मामले की गहन जाँच करेंगे, जिम्मेदार लोगों को न्याय की कटघरे में लाएंगे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। सरकार ने आज बताया कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब 51 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में यह निर्यात 45 अरब 73 करोड़ डॉलर था। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सितंबर 2026 में भारत का कुल निर्यात लगभग 80 अरब 75 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये सितंबर 2025 की तुलना में 10.99% की वृद्धि है। वहीं सितंबर 2026 में कुल आयात करीब 94 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 8.19% अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से सितंबर के दौरान भारत का कुल निर्यात 476 अरब 20 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। इसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 13.84% की वृद्धि दर्ज की गई। सुपर्णा और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के पेशावर में आज एक विद्यालय की छत गिरने से 34 विद्यार्थियों और एक शिक्षक की मौत हो गई। पेशावर के पुलिस प्रमुख मियां सईद ने बताया कि यह हादसा शहर के घनी आबादी वाले इलाके दीर कॉलोनी में हुआ। पुलिस के अनुसार 3 मंजिला इमारत की छत का निर्माण ठीक से नहीं किया गया था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति से जुड़े चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय पर अत्यधिक चयनात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा कि कुछ देशों में विरोध प्रदर्शनों पर कार्यालय की प्रतिक्रिया दोहरे मापदंड को दर्शाती है, जिसमें बहुपक्षीय संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनूद स्वरूप ने ये बात कही। श्री स्वरूप ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और मानवाधिकार उच्चायुक्त के विस्तृत बयानों का उल्लेख किया। इन बयानों में सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों से जुड़े मामलों में हुई हत्याओं की तत्काल, गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सुलभ कराने पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने और स्थानीय लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक राजनीतिक संवाद शुरू करने का आह्वान किया गया। यूक्रेन ने आज रूस के तेल शोधन संयंत्रों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा प्रणालियों ने तेल शोधन संयंत्र पर हमला करने वाली यूक्रेन की 4 फ्लेमिंगो मिसाइलों और 69 ड्रोन को मार गिराया। हालांकि ड्रोन के मलबे से तेल शोधन संयंत्र में आग लग गई। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से ठुकराया गया ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर अस्थायी युद्ध विराम अब समाप्त हो गया है। जिद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि वह सऊदी अरब में उड़ान सेवाओं में व्यवधानों से प्रभावित भारतीय नागरिकों, विशेषकर उमरा यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहा है। अमेरिका के लास वेगास में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में विश्वजीत को जॉर्जिया के कोबा कारोमिजिन से हार का सामना करना पड़ा। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वैश्वीकरण को अपरिवर्तनीय बताते हुए मजबूती और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया। इलिनॉय में हिंदू मंदिर पर हमले की नाकाम कोशिश के बाद भारत ने अमेरिका से भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल की छत गिरने से 34 बच्चों और एक शिक्षक की मौत और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद मोरे ने लास वेगास में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा।

0: The time now is 11 p.m. and coming up is the news in Hindi.
1: समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G-SAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हों जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, उनकी उपलब्धियां दिखाती

0: है कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. I'm Shagun Chopra with my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है शगुन।
0: Yes, benchmark domestic indices surge around 2%. Sensex jumps over 1500 points. Nifty settles at nearly 23,000 level. Country's merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 2% का उछाल। सेंसेक्स में 1500 से ज्यादा अंकों की तेजी। निफ्टी 23,000 अंक के आसपास बंद हुआ। देश का उत्पाद निर्यात इस वर्ष सितंबर में 23% की बढ़त के साथ $44.4 अरब बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक यानी 2.11% उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक यानी 1.66% की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार का प्रदर्शन आज मुख्य सूचकांकों के मुकाबले कमजोर रहा। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% नीचे आ गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended higher today. The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. The mid-cap 100 index dropped nearly 0.4% and the small-cap 100 index shed 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 27 कंपनियों के शेयरों में आज तेजी दर्ज की। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा 4.6% ऊपर आया, आईसीआईसीआई बैंक 4.2% के लाभ में रहा और रिलायंस में 4% की बढ़त दर्ज हुई। इसके विपरीत बीईएल और ट्रेंट में 0.6% की गिरावट आई, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.1% से ज्यादा नीचे आ गया।
0: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 28 sectors ended in the positive note. Among the top gainers, top 10 banks climbed 2.3%, private banks advanced over 1.8%, and IT jumped 1.5%. In contrast, capital goods dropped over 2.4%, power slipped more than 1.8%, and PSU banks dipped 1.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,668 companies declined, 1,720 advanced, and 203 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले आज 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एकेबी, आज के मार्केट की हम बात करें तो सेंसेक्स में हमने देखा लगभग 1,500 अंक से अधिक का उछाल आया, वह निफ्टी भी 23,000 के आसपास पहुंच करके बंद हुआ। कई दिनों बाद ये आंकड़े हमारी आंखों के सामने हमें नजर आ रहे हैं, तो इन तेजी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, घरेलू कारण ज्यादा जिम्मेदार रहे, या फिर इसे बाजार में एक मजबूत वापसी का संकेत माना जा सकता है?
2: देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाजार में मजबूती आने का ये संकेत है। ये जो आज का जो उछाल आपने देखा है, इसको हमें बारीकी से देखना है। इस उछाल में के पीछे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि हालांकि ये एक लार्ज कैप स्टॉक सेंटर्ड रैली है, इसमें अगर आपने जैसे अभी पढ़ा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई है
3: जी।
2: तो ये रैली सिर्फ फोकस्ड है लार्ज कैप स्टॉक में, ये रैली सिर्फ फोकस्ड है आईटी सेक्टर में, ये रैली फोकस्ड है प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। आपको मालूम होगा कि कल सरकार ने बहुत बड़ा एक निर्णय लिया था कि

0: आईडीबीआई बैंक का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका. सो उसी का एंड आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक जो Q2 जो रिजल्ट जो आ रहे हैं उसमें काफ़ी उछाल आया है और उसी के कारण हम ये देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में आपका जो बढ़त आज आपको हासिल हुई है. मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बढ़ोतरी हमें पिछले कई महीनों में दिखी वो आज वो काफ़ी गिरावट में आई. उसका कारण भी ये है कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज क्योंकि उस लेवल में. और दूसरी बात यह है कि जो रुपया जो है और रुपए में थोड़ी मजबूती आई है क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीशन से, उससे भी जो मार्केट में थोड़ी बहुत मजबूती आई है. पर अगर आप ये समझे कि आज की जो मजबूती आप देखी ये कोई अगले दिनों का संकेत है ये मैं नहीं मानूंगा. ये वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है वो अभी भी चलती रहेगी और ये एक रिकवरी फेज़ है और रिकवरी फेज़ का कारण जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर और प्राइवेट बैंकिंग में और लार्ज कैप स्टॉक में जो एक रिकवरी और Q2 अर्निंग्स की जो एक मजबूती है वो दर्शाती है.
1: सर, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स दे फेस प्रेशर डिस्पाइट द रैली इन द मार्केट. So, and I have two questions for you.
0: Sure.
1: Both of them I'll question right now only. So, does this imply that investors are concentrating their capital only in select large cap companies? First one. And what signal should retail investors take from this particular divergence?
0: So, I think what the investors are doing is they are pulling their money out of the small and the mid cap stocks. Because the small and the mid-cap stocks had already appreciated to a level where profit booking was possible. Mm. So they are pulling their money out. And they are also reinvesting in the large-cap stocks and taking positions and keeping their powder dry because we are entering into a major big IPO phase. And when you are entering into a major IPO phase, like the Jio, Reliance Jio IPO is going to hit the markets very soon. It will be one of the largest IPOs. So that IPO would mean that the domestic investors are gearing up for that position. So I think the mid-cap and the small-cap profit booking has led to the surplus which is going into the large-cap, and the large-cap is being positioned as a preparatory step for investing in the new IPOs that are coming.
2: एकेबी, आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स ने मार्केट को काफ़ी सहारा दिया. आपने भी आईटी शेयर्स का जिक्र किया है, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी कमजोरी देखी जा रही. तो इन्हीं सेक्टर्स में बाजार आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ऐसा फेज आपको लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली जो व्यापक हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी और सभी चीज़ों में आगे एक जैसा माहौल देखने को मिलेगा?
0: आपने एक बहुत सही प्रश्न किया है. मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर की जो स्ट्रेंथ जो है बहुत क्वार्टर के बाद AI की जो चपेट आईटी सेक्टर में आई थी उसको उसके ऊपर जो इंडियन आईटी सेक्टर की जो बायोंसी जो रेजिलियंस जो है उसको दर्शा रहा है. और बहुत क्वार्टर के बाद जो Q2 अर्निंग्स जो आ रही हैं सब आईटी कंपनीज की Q2 अर्निंग्स में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर को हमें ट्रैक करना पड़ेगा और किस तरह से हम आगे आईटी सेक्टर को देखेंगे उसको हमें ये एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर रहेगा मैं समझता हूँ.
1: ऑल्सो मिस्टर भट्टाचार्य, PSU बैंक परफॉर्मेंस, आई मीन व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट PSU bank performances nowadays?
0: What's well, I think what's happening is that the PSU banks have done very well since the prompt credit reaction plan was put in place by the Reserve Bank of India in 2017. For the next 3-4 years, the PSU banks have done very well in reducing their gross non-performing assets. Even their net non-performing assets have come to a very, very comfortable level. And IDBI Bank, which is also considered a public sector bank, has reached a point where it could get a reasonable premium on the prevailing market price to be sold to a foreign.

0: investor. So I think public sector banks have done well. They are seeing credit visibility. The interest margin, the net in the margin NIM, net income interest margin, is still very strong as comparable with the private sector banks. So I think public sector banks are doing reasonably well.
1: Now shifting our focus to Tech Mahindra result. Tech Mahindra today reported its financial results for the second quarter of the current financial year. The company's consolidated revenue increased by 15.6% on an annual basis to 16,180 crore rupees. The firm's net profit rose by nearly 33% to 1,585 crore rupees year over year. The board also approved an interim dividend of 15 rupees per share.
2: चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 13.21% बढ़कर 13,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। आयकर विभाग द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार रिफंड में अधिक तेजी देखी गई। पिछले साल के 2,13,000 करोड़ रुपए से 24.22% बढ़कर ये 2,65,000 करोड़ रुपए हुआ। इस अवधि के दौरान प्रतिभूति लेन देन कर एसटीटी संग्रह में 51% से अधिक का उछाल आया और ये 46,840 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एकेबी जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं मौजूदा व्यवस्था में, ऐसा आपको लगता है कि तमाम चीजें बदल रही, खासतौर पर जब हम कर संग्रह की बात करते हैं, सरकार नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रही, नए तरीके लेकर के आ रही, इससे काफी आंकड़ों में तेजी आई, बढ़ोतरी आई है और नई चीजें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं।
0: देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो टैक्स कलेक्शंस जो केंद्रीय सरकार करती है, उस टैक्स कलेक्शन में जो एक बायोंसी हमें देखने को मिल रही है वो काफ़ी सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो अगर आप नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की जो वृद्धि दर जो है, ये ना कि सिर्फ कॉरपोरेशन टैक्स से हुई है बल्कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स से भी हुई है। इसका मतलब ये जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी जो है वो जब टैक्स बेस जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और मैं यही मानता हूँ कि अगर यही ट्रेंड अगले 6 महीने में बरकरार रहे तो सरकार की जो ग्रोथ रेट जो बजट में दिखने को आया था वो ग्रोथ रेट का लक्ष्य वो पूरा करके उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। और जैसे हमने अभी भी कहा कि जो IDBI बैंक की जो विनिवेश से जो पैसा जो आएगा करीबन 32,000 करोड़, उससे भी काफ़ी सरकार के खजाने को काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सरकार की जो वित्तीय जो घाटा का जो एक चैलेंज हर साल में आता है, मुझे लगता है कि इस साल हालांकि वैश्विक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पर उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस बार जो केंद्रीय सरकार की जो पब्लिक फाइनेंस जो है, जो वित्तीय घाटा जो है उसको कंट्रोल में लाने के लिए कोई ज़्यादा असुविधा नहीं होगी।
2: सितंबर में भारत में कुल श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार इनसे रोजगार संकेतकों में सुधार प्रदर्शित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। कुल श्रम बाल भागीदारी दर बढ़कर 55.5% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पिछले साल के मुकाबले मामूली गिरावट आई है। महिलाओं की भागीदारी में पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी अक्टूबर 2025 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 52.7% हुआ है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात अक्टूबर 2025 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी में सुधार देखा गया। कुल बेरोजगारी दर पिछले साल सितंबर के मुकाबले 0.25% अंक घटकर 5% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 6.8% पर लगभग स्थिर है। एकेबी, सितंबर में जिस तरह हम आंकड़े ये देख रहे हैं 5% रह गई है, रोजगार के मोर्चे पर भी सुधार के संकेत नजर आ रहे हैं, इन आंकड़ों से आपको क्या नजर आता है, कैसी परिस्थिति इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से?
0: देखिए, जो डेटा जो पॉइंट जो आपने अभी बताया है उसमें ये लगता है कि दो चीज मुझे साफ नजर आ रही है। एक तो है बेरोजगारी दर जो है उसमें घाटा हुआ है, वो एक इकोनॉमी के

0: बात करें तो अमेरिका को लेकर के लगभग 51 अरब डॉलर अप्रैल से सितंबर के महीने में इस वर्ष बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। एक तरफ हम समझौते की बात कर रहे हैं और निर्यात भी हमारा बढ़ रहा है। ये परिस्थितियां इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए अगर देखें कैसी नजर आती हैं आपको?
1: देखिए, इसका मतलब यही है कि जो विश्व की जो दो बड़ी बड़ी अर्थनीतियों में से भारत और यूएस हैं, और भारत की जो एक्सपोर्ट्स जो जो डिमांड यूएस से आती है भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए
0: जी,
1: वो ऐसे सेक्टर से आती है उसकी जो भारत की जो कॉम्पिटिटिवनेस जो है, जो प्रतिस्पर्धिता जो है, उसमें अभी तक कोई आँच पहुँची नहीं है। और आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो टैरिफ जो है अभी भी काफ़ी वस्तुओं के ऊपर सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का ही टैरिफ लगा हुआ है, कोई ज़्यादा टैरिफ अभी तक आया नहीं है, और उसी का कारण ये है। और रुपया डिप्रिशिएट होने के बाद भारतीय जो जो जो जो निर्यात जो जो करते हैं उनके लिए एक बहुत एक पॉजिटिव साइन है
0: जी।
2: Now we'll reflect on the Bloomberg New Economy Forum in New Delhi. U.S. Ambassador to India Sergio Gore has described India as an unmatched market for American companies, and he was speaking at this Bloomberg New Economy Forum today in New Delhi. Mr. Gore highlighted the growing cooperation between the two countries across sectors. This included defense, IT and trade. Mr. Gore also underlined that India is well positioned for AI and technology development on its own soil, adding that partnerships with leading American companies would be mutually beneficial. He expressed confidence that India and the US would conclude a trade deal, saying the two sides had made substantial progress despite the complexity of the negotiations. Meanwhile, Ambassador Gore said that the US President Donald Trump is expected to make a decision within the next 10 days on sanctions provisions that could affect countries buying Russian oil and gas.
3: We have ongoing discussion on that. So the sanction options that Congress passed, they're not targeted at any individual country. It just happens that India does fall in one of those buckets, along with a lot of other countries. The goal is not to punish anyone. The goal is to try to bring an end to this war. I do think the president will make a determination on that over the next 10 days.
2: The National Payments Corporation of India, NPCI, has postponed the implementation of the merchant discount rate, MDR, on select person-to-merchant UPI transactions. MDR, which was earlier scheduled to come into effect from today, will now be implemented immediately after Diwali. NPCI has said that the implementation date will be notified separately.
0: एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट देखने को मिली। चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स करीब 7.6% लुढ़क गया। जापान का निक्केई 4.9% नीचे आ गया। एकेबी, आज कई दिनों बाद हमने साउथ कोरिया के इंडेक्स में तेजी देखी है, और ये तेजी भी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई सुस्ती के चलते नजर आई। हालांकि एक तरफ आईटी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन चिप सेक्टर नेगेटिव खबर लेकर गया, जबकि कुछ समय पहले तक लगभग दोनों एक ही वे में पैरेलल चलते थे।
1: देखिए, जो जो मार्केट में जो जो चिप सेक्टर की जो ट्रबल्स जो हैं, चैलेंजेस हैं, वो अभी कहीं कहीं नहीं है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अभी भी जो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल मामला है ये। और जो अगर आप बारीकी से देखें तो साउथ कोरिया कहें या जर्मनी कहें या यूनाइटेड किंगडम की जो स्टॉक मार्केट को देखें, तो वो उनके इकोनॉमी की जो जो जो दुर्बलता है उसको रिफ्लेक्ट दर्शाती हैं। हालांकि अगर आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन जो उन्होंने अपग्रेड किया है, उसी के लिए भी थोड़ा बहुत जो भारत में जो स्टॉक मार्केट ने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसका भी कारण एक है। और इनकी जो एशियन और बाकी एशियन और यूरोपियन मार्केट में जो ग्रोथ की जो जो आउटलुक उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रही है, उसके लिए भी उनके स्टॉक मार्केट में ये धीमापन दिख रहा है।
0: ब्रिटेन के लिहाज से एक अच्छी खबर वहाँ पर ये देखने को मिली कि वहाँ GDP मासिक आधार पर 0.1% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे समय जब अमेरिका की स्थितियाँ ब्रिटेन और यूरोप को लेकर काफी तेजी से बदल रही है, तो ब्रिटेन के लिए कितनी अच्छी खबर इसे माना जा सकता है?
1: इतने बहुत बहुत महीने बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, दुर्बलता जो थी, उसके बाद ये रिकवरी हुई है। मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक इकोनॉमी के एक एक बाउंस बैक वो है, और इसमें हम ज्यादा कोई रीडिंग नहीं करना चाहिए।
2: And global crude oil prices, they eased today. Brent crude was trading 1.7% down at $104 and 21 cents per barrel. West Texas Intermediate crude was

0: trading 0.2% down at $94.95 per barrel at the time when we were writing the report.
1: तो AKB क्रूड ऑयल पर आपके क्या ओपिनियन होंगे?
2: क्रूड ऑयल में तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के दाम थोड़े घटते हैं तो हमारी जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है. ये स्टेबिलिटी आएगी और हमारी ऑयल कंपनीज की जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है उसमें भी अच्छा एक प्रदर्शन कर सकती है. तो पर स्टॉक मार्केट के तरह क्रूड ऑयल प्राइस के भी वॉलेटाइल है, ये ऊपर नीचे जा रही हैं. इस वक्त इनका जो लेवल जो है वो अभी भी हमारे देश के लिए उतना अच्छा नहीं है, इसको और भी नीचे आना चाहिए अगर हमारी इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा सके.
1: और श्रोताओं, भारतीय सराफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.1% गिरकर 1,45,942 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं चांदी की कीमत 2.6% लुढ़ककर 2,08,275 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई. एकेबी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
0: And now before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices surge around 2%, Sensex jumps over 1,500 points, Nifty settles at nearly 23,000 level. Countries' merchandise exports rise over 23% to $44.4 billion in September this year. And global crude oil prices decline. And that's it in this particular edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

0: अर्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी। इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालत्सी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GZ-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AM Barasu की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GZ-7C उपग्रह के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। भारत और दक्षिण कोरिया पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बदलाव के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इनमें परमाणु ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। सियोल स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत गौरांगलाल दास ने वहां की नेशनल असेंबली की पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा और श्रम समिति के अध्यक्ष किम जंग हू से मुलाकात की। इसका उद्देश्य भारत और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना, पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर तलाशना है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है या हाल ही में पूरा हुआ है वहां कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "The development of Ladakh

0: remains a key priority for the center.
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
0: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract

0: இரவின் மடிகள் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ஈரமான ரோஜாவே, அதிகாரி, சின்னத்தம்பி ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना

0: योजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दान हनु खालत्सी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधुघाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांव में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AMBA रासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती है कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "The development of Ladakh remains a key priority for the centre."
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence yesterday signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
1: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालत्से ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत G-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक AM बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. G-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक

गठबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रीमा नानावटी को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए हिलेरी रोडम क्लिंटन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन सेवा की निदेशक रीमा नानावटी को यह पुरस्कार अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वेमेन पीस एंड सिक्योरिटी में प्रदान किया। रीमा नानावटी ने भूकंप से प्रभावित ग्रामीण महिलाओं के जीवन और रोजगार को फिर से बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இனிமையான கானங்களால் இதுவரை நம்மை மகிழ்வித்து சென்றது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. ஆகாஷ்வாணியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ரோஜா கூட்டம் மற்றும் ராஜா ஆகிய திரைப்படங்களுக்காக சில பாடல்கள் ஒலித்தன. பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर

0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है। डीसीपी नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये सम्मेलन उत्तरदायी, पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी आधारित शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing yesterday. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, the development of Ladakh remains a key priority for the center.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said, a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence yesterday signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varuna's heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varuna's heavyweight torpedoes, worth over 1,500 crore rupees, was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other INDIA bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the apex court in the national capital. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on the 12th of this month to file their petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision SSR of electoral rolls with 1st of January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab,

0: service for telecom users from the 1st of the next month. The Department of Telecommunications, DOT, has directed all telecom service providers to introduce the calling name presentation, CNAP service, across all service areas from the 1st of November. Under the service, the name of the caller as recorded in the subscriber database of the originating telecom service provider will be displayed on the recipient's phone along with the caller's number. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, East Rajasthan and West Uttar Pradesh today. In women's cricket, India will face Zimbabwe in the first T20 international of the three-match series at the Shahid Veer Narayan Singh International Cricket Stadium in Raipur today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. Female spectators will be allowed free entry in all the three matches following a suggestion by Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai. And that is the end of this news bulletin.
1: நேரம் 3:10.
2: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz ஆகாஷ்வாணி சென்னை எஃப்எம் கோல்ட்.
1: நேர்கள் இனி கேட்க இருப்பது இனிய ராகம். இன்றைய இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் ஹிரபாய் பரோடுகர் அவர்களின் பாட்டு இடம்பெறும். முதலில் அதைத் தொடர்ந்து இக்பால் பெனோ அவர்களின் கசல் இடம்பெற கேட்கலாம்.
3: इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए आप सुनते हैं विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर का गायन राग अभोगी। विलंबित ख्याल जपताल में निबद्ध है, ख्याल के बोल है चरण धर आए। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है बनरा रंगीले। आपको तबले पर संगति की है सूर्यकांत गोखले ने और सारंगी पर है मधुकर खडिलकर। आइए सुनते हैं विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर ने प्रस्तुत किया राग अभोगी।

हम सुन रहे थे विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर का गायन, राग था अभोगी। आपको संगति की थी तबले पर सूर्यकांत गोखले ने और इस सारंगी पर थे मधुकर खडिलकर।

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனியராகும் பண்பலையில். இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பவதாரிணி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी. नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक A.Ambarasu की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे. उपराष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के जहाज INS समर्थक को बेड़े में शामिल करने के समारोह में भाग लेंगे. इसके बाद उपराष्ट्रपति केरलम के कोझिकोड में नवरात्रि सर्गोत्सवम 2026 का उद्घाटन करेंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता. न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है. भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं. इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं. दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई है. DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की है.

ई गवर्नेंस सुधारों पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें ई गवर्नेंस सुधारों, डिजिटल बदलाव, नवाचार और प्रभावी शासन व्यवस्था अपनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ आज 3 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा मैच 18 और तीसरा मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। T20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जाएंगे। मौसम विभाग ने दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल तक आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்றைய நிகழ்ச்சியில் திருப்புலிவனும் இ உத்தரகுமாரன் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டோம். மேடவாக்கம் ஆர் குமரவேல் அவர்கள் தவில். பண்பலையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सकलैन अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक और केरलम के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के जहाज INS समर्थक को बेड़े में शामिल करने के समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति केरलम के कोझिकोड में नवरात्रि सर्गोत्सवम 2026 का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख तय की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई हैं। DCP नेहा यादव ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से नियमों का उल्लंघन करने वाली भीड़ में शामिल न होने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। ई गवर्नेंस सुधारों पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे।